88 और 89। खुदा ने कहा ये जो लोग हैं ना वो खुदा को मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है ना कि तुम्हें किसने खल्क किया तो जवाब आता है अल्लाह, कि हमें पैदा करने वाला खालिक और कोई नहीं, कौन है? अल्लाह। लेकिन ये मानेंगे नहीं। उसके बाद खुदा ने कहा वकील ही, मेरा नबी कहता है क्या, या रब इन्ना हाउलाइल कौम ला युमिनून। सही है, हाँ? नबी कहेगा खुदाया क्या करूं, थक गया चीखे मार मार कर, थक गया खुदाया अब क्या करूं, ये मानने वाली कौम नहीं, ये कभी ईमान नहीं लाएगी। खुदा ने क्या कहा जवाब में, फफसा 89, फसफा छोड़ दो, वकुल सलाम सलाम कह दो, फसौफा यालमून बाद में उनको पता चलेगा कि वो आया था हक बात लेकर, लेकिन हमने नहीं मानी। अभी नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे, लेकिन नबी का काम यह है कि वो अपना काम करता रहे, यही बात मेरी है। आपको मानना है तो ठीक, नहीं मानना है तो भी ठीक। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो छठे इमाम ने कहा अबान मैंने अगर बयान किया ना तो नहीं मानेगा, लो हदस तकुम लकफर तुम, तू नहीं मानेगा। कहा मौला बताए क्या है। कहा अबान जब तू मरेगा ना तो आखिरत के जितने मनाजिल है ना, जितने मनाजिल है, एक एक मंजिल पर ये नूर तेरे साथ होगा, एक एक मंजिल को वो तुझे तय करवाएगा, और आखिर में अगर तूने उसको पूछ लिया ना क्या ए नूर तू कौन है, तो वो नूर जवाब देगा कि कुंतो असुरूर लदी अदखलता फी कुलूबिल मुमिनीन वो खुलिक तो बे, मैं तेरे साथ कब्र के अंदर जितने मनाजिल है उसको तय करने के लिए खुदा ने मुझे पैदा किया है तेरी मदद के लिए, मैं कौन हूं, मैं वो खुशी हूं जो खुशी तूने मोमिन के दिल में डाली थी, मैं वो खुशी हूं वो सुरूर हूं, लोगों को खुश करना बेकार में नहीं हकीकत में खुश करना, वो कैसा काम है। पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, पांचवें इमाम का इरशाद है, आपने कहा अहब्बुल अमाले इलल्लाह असुरूर तुदखिलहू फी कल्बिल मुमिन, सबसे पसंदीदा आमाल में से अगर कोई अमल है खुदा के नजदीक तो वो क्या है कि किसी मोमिन के दिल में खुशी पहुंचाना, किसी मोमिन के दिल में खुशी पहुंचाना। ये पूरी बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ने कहा है कि खुशी जब बंदा अपने बंदों के अंदर डालता है तो मैं भी खुश होता हूं। नबी ने भी कहा था ना कि किसी मोमिन को खुश किया मैं नबी खुश होता हूं, और जब मैं खुश होता हूं तो अल्लाह राजी होता है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो जन्नत की कामयाबी से बेहतर और ज्यादा क्या है, रिजाए इलाही व रिदवान मिन अल्लाह अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अधीम, अल्लाह की रिजा वो जन्नत से भी अकबर है, वो जन्नत से भी ज्यादा है। अब देखिए ये रिजा को हासिल करनी है तो कैसे की जाएगी, बहुत सी हदीसें हैं। ये पूरा अशरा हमने जो पढ़ा ना, हमने बात कहाँ से शुरू की थी, आज इख्तिताम पर आ रही है। मुझे कहने का ये हक दे दीजिए कि अभी जो हदीस पढ़नी है ना अभी, वो यूं समझ लीजिए कि पूरे अशरे का खुलासा है, पूरे अशरे का खुलासा। क्यों? क्योंकि जितनी कामयाबी हमने आपके सामने पेश की और इन सब कामयाबी से ज्यादा सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, अल्लाह के रिदा, खुदा मुझसे राजी हो जाए, मैं खुदा से राजी और वो मुझसे राजी। अब देखिए

ये बात मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम मौला ने कहा रिदल्लाहि अज़्ज़ा व जल मकरूनुन बिताअते, अल्लाह की रजामंदी रजामंदी के साथ उसकी इताअत को हम साथ होना और रहना जरूरी है। अल्लाह की रजा नहीं हो सकती जब तक के अल्लाह की इताअत भी साथ में न हो। सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह की रजामंदी है, खुशनुदी परवरदिगार। लेकिन मौलाए कायनात ने क्या कहा कि खुशनुदी परवरदिगार क्या है, मकरूनुन बिताअते, वो अकेली चल ही नहीं पाती, खुदा की खुशनुदी अकेली हो ही नहीं सकती, वो हमेशा इताअत के साथ चलती है। जहां जहां इताअत परवरदिगार होगी वहां वहां रजाए इलाही होगी। अगर इताअत परवरदिगार हट गई तो रिजाए इलाही वहां से हट जाएगी। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये जब मौलाए कायनात ने कह दिया, पता कैसे चले? मैं आपसे पूछता हूं, ये मुनकर नकीरियां हैं केराम अल कातिबीन या अमीर भाई या मिनाज भाई? अमीर भाई, आपको लगता है कि खुदा आपसे राजी है? आपकी बात कर रहा हूं। दिल ये कहता है, क्या दलील है? अच्छा मिनाज भाई, आपको लगता है खुदा आपसे राजी है? हाँ नहीं पता ना, एक बात पहले सुनाई देता हूं, सुनिएगा। खुदा की रजामंदी चाहिए, लोगों को हमसे राजी रखना पड़ेगा। सोचिएगा भाई, सोचिएगा। सलमान फारसी आई है मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के पास, बैठे, कहा मौला एक फिक्र आई है, एक सोच दिमाग में घूमती है जिसकी वजह से नींद नहीं आती, एक सोच दिमाग में आती है जिसकी वजह से नींद नहीं आती। मौला इसका कोई हल बताइए। मौला ने कहा सलमान पहले ये बताओ सोच क्या है। सलमान ने कहा सोच इतनी ही है कि पता नहीं मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में। सलमान फारसी जिसको रसूल खुदा ने असलमान व मिन्ना अहलेल बैत की सनद दी है, वो भी सोच रहा है, वो भी बड़ा हुआ है इमाम अली के साथ। मैंने और आपने न रसूल को देखा, न अली को देखा, न किसी इमाम को देखा, यहां पर तो हमारी जन्नत पक्की है। जो नबी के साथ रहता है, जो अली के साथ रहता है, उनको उनकी बज्म में रहकर भी अभी भी इत्मीनान नहीं कि जन्नत मिलेगी या नहीं। तो हमको ये सब सबक किसने सिखाया है कि जन्नत आपकी पक्की है? मौलवियों ने। मौला रात को नींद उड़ गई है, पता नहीं जन्नत मिलेगी या जहन्नम। अली ने कहा एक सवाल का जवाब दे दो तो इंशाल्लाह जन्नत। कहा मौला फरमाइए क्या है हल। कहा सलमान घर पे जाओ, घर पे जाओ, अपने सर को विसादा तकिए पे रखो, सोने की कोशिश करो, और सोने से पहले एक जवाब का, एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करो। और सवाल ये अपने आप से करो कि अगर कल को मैं मर गया, कल को मैं मर गया तो क्या मेरे मरने के बाद अगर लोगों ने कहा कि छूट गए, जल्लाद गया, कोई काम नहीं था इसका दुनिया में, अगर मेरे जाने के बाद लोग खुश हो जाएंगे कि ये बहुत बला टली, अली ने कहा समझ लेना तेरा ठिकाना जहन्नम है। और अगर यही सवाल अपने आप से कर कि कल को अगर मैं मर जाऊं तो मरने के बाद लोग अफ

महसूस करे कि काश और दिन ये ज़िंदा रहता, इसके साथ ज़िंदगी बिताने में कितनी मज़ा आती थी, कितना नेक इंसान था। अगर मरने के बाद तुझे ये लगे कि लोग अफसोस करेंगे, लोग तुझे याद करेंगे, तो समझ लेना तू जन्नती है। कब लोग तुझे याद करेंगे? जब तूने अपनी जिंदगी में लोगों को खुश रखा होगा। अगर लोगों को मारता पीटता होगा, अगर लोगों को अजियत देता होगा, तो लोग तेरे मरने के बाद तुझे क्या दुआएं देंगे? खुदा की रजामंदी आज से शुरू कर दे हम सब, कि आज घर जब जाओ सोचू कल को मैं मर गया तो पीछे से कौम मुझे दुआएं देंगी या लानतें बरसाएगी। अल्लाह की रजामंदी चाहिए, बंदों को खुश करने का है, बंदों को रजामंद करने का है। मैंने आप दोनों किराम अल कातिबीन अमीर भाई और मिनहाज को इसलिए पूछा, यही बात जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वाला नबी ना वाले मोहम्मद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद करीम की बारगाह में जाकर कहा खुदाया अखबिरनी अन आयत रिदा का अब्दिक। जनाब मूसा ने खुदा को कहा खुदाया तू मुझे निशानी बता दे कि कब तू अपने बंदे से राजी होता है, वो निशानी बता दे ताकि मैं अपनी कौम को बताऊं कि ये निशानी तुझ में पाई जाए तो खुदा तुझसे राजी है। इलाही अखबिरनी अन आयत रिदा का अन अब्दी अन अब्दिक, मुझे खबर दे दे खुदाया कि वो कौन सी निशानी है कि तू अपने बंदे से राजी है। खुदा का जवाब आया, गौर से सुनना, खुदा का जवाब आया, कहा या मूसा इदार आईता ओ हय्ये ओ अब्दी लिता अती व उसरिफो अनहु मासियती फजालिका आयतो रदाई। ऐ मूसा जब तुम देखो कि मैंने अपने बंदे को मेरी इताअत के लिए आमादा कर लिया है और जब तुम देखो कि मैंने अपने बंदे को मेरी मासियत से दूर कर दिया है तो समझ लेना कि यह मेरी रजामंदी की निशानी है। सुना आपने क्या कहा खुदा ने कि जब बंदा इताअत गुजार हो जाता है और मासियत से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो खुदा ने कहा कि ये मेरी वो निशानी है कि मैं उस बंदे से राजी हूं। अब दिल की नहीं सुनने की अमीर भाई, कि दिल में ये महसूस होता है। दो ही मेयार है, दो ही मेयार कौन कौन से हाजी? इताअत और मासियत। अगर फरमाबरदार हूं और मासियत नहीं करना चाहता हूं तो खुदा मुझसे राजी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। है पानी है सल वाला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अल्लाह का रिद्वान, अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की खुशनुदी कामयाबी की वो राह है कि जो जन्नत से भी बड़ी है। मुझे अपने परवरदिगार को राजी करना है और बहुत सी बातें हैं जिसे मेरा परवरदिगार मुझसे खुश हो जाता है। मेरा आपका हम सबका नवा इमाम इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद आपने कहा सलासा युबलिगना बिल सलासा युबलिगना बिल अब्द रिद्वानुल्लाह। तीन ऐसे काम है, तीन ऐसे काम जो अल्लाह के बंदे को खुदा की खुशनुदी तक पहुंचा देता है। तीन ऐसे काम है, सलासा युबलिगना बिल अब्दे रिद्वान अल्लाह। तीन काम ऐसे हैं कि जो बंदे को खुदा की रिजा रजामंदी खुशनुदी तक युबलिगना वहां पहुंचा देता है। ये बलग अबलग वाली बात याद है, या रसूल बल्लेग पहुंचा दे। तीन काम ऐसे हैं कि जो बंदे को खुदा की खुशनुदी तक पहुंचा देता है। तीन, एक, पहला किसरतुल इस्तगफार। बंदा जब ज्यादा कसरत से इस्तगफार करता है ना,
तो वो खुदा की रजामंदी को हासिल कर

लेता है। हमने सब बातें की है ना, इस्तग़फ़ार कौन करेगा, कब करेगा, कब करेगा, कब करेगा, जब अपने आप से शर्म को महसूस करेगा ना कि मैं गुनहगार बंदा हूँ, मुझे माफ़ी की तलब है, मैं माफ़ी का हकदार हूँ, मैं गुनहगार खताकार बंदा हूँ, लेकिन उसका एहसास मुझे है ही नहीं। मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी कहता हूँ, जो भी बोलता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, वो सब मुझे हक हक हक लगता है। ऐसे लगता है कि नबी ने ये बात मेरे लिए की है, यानी दूसरे अल्फाज में यूं कहूँ कि अगर नबी की कोई और दूसरी बेटी होती तो खुदा मुझे उसका दूसरा दामाद चुनते। समझे आप क्या कह रहा हूँ? नबी की एक ही बेटी थी और उसके दामाद थे मौला, लेकिन मेरा किरदार ये है, मेरा मानना ये है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि अगर नबी की कोई दूसरी बेटी होती ना तो चुन चुन के मुझे के तक शेख मुइज़ आओ आओ मेरी बेटी से आप शादी करो। मैं अपने आप को फरिश्ता समझता हूँ, कभी मैं गौर व फिक्र ही नहीं करता। बातें बहुत रह चुकी है लेकिन क्या करे, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। क्या है खुदा के बंदे, अपना हिसाब व किताब तो कर। अभी अभी आपने कुरान की तिलावत की ना, अभी यहाँ बैठे बैठे सूरह बनी इसराइल की 14वीं आयत, बातें आ चुकी है, चैप्टर 17 वर्स नंबर 14, खुदा कहेगा इकरा किताब कफा बिनफ्सिकल यौम अलैक हसीबा, ऐ खुदा के बंदे अपने किताब अपने नामाए अमाल को पढ़, आज तेरे खिलाफ यही तेरा अमाल नामा जो है ना वो काफी होगा। खुदा कहता है मुझे तेरा हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं, तू खुद अपने लिए काफी होगा। ऐ खुदा के बंदे, क्या नबी का फरमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नबी को नहीं सुना? हासिबू अनफुसकुम कबल अन तुहासिबू, अपने नफ्सों का हिसाब किताब करो उससे पहले कि वो तुम्हारा हिसाब किताब करे। लेकिन हमें तो हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। तो ये नबी के सब अकवाल पानी में, क्योंकि जन्नत तो मेरी है। इतनी हदीसें इमामों की कि अपने आप को देखो, अपना हिसाब व किताब करो, सब डस्टबिन में, मजबला में, कि मैं अपना हिसाब व किताब करूं नहीं, बस जन्नत मेरे बाप की जागीर है। तीन चीज, किथरतुल इस्तग़फ़ार। उसके बाद नवे इमाम ने कहा वलीनुल जानिब, क्या बयान करूं, लीनुल जानिब, नर्म होना। कुरान पढ़िए, कुरान चैप्टर 3 वर्स नंबर 159 तीसरा सूरा 159वीं आयत, खुदा ने कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम फबिमा रहमतिम मिनल्लाह लिंत लहुम वलो कुंता फज्जन गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़ू मिन हौलिक। अल्लाह की रजामंदी बंदे को चाहिए, नबे इमाम ने कहा अपने आप को क्या बना, नर्म मिजाज बना। और खुदा ने रसूल खुदा के लिए क्या कहा कि खुदा की रहमत का तेरे साथ सहारा था, इसलिए तू लोगों के दरमियान इतना नर्म मिजाज था कि लोग तेरे इर्द गिर्द घूमते थे। अगर तू शदीदुल कल्ब इंसान होता लन फक्दु मिन हौलिक, लोग तुझसे भागते। क्यों? क्योंकि मैं जिसके साथ रहता हूं उसको खुश करने की सलाहियत मुझ में नहीं, लोग मुझसे कतराते हैं, और मैं चला हूं कि खुदा को मैं राजी करूं। खुदा ने कहा मुझे अगर राजी करना है तो बंदों को राजी कर, क्योंकि ये मेरे बंदे हैं। अल्लाह की रजामंदी कामयाबी सबसे बड़ी कामयाबी है। और तीसरी बात नवे इमाम ने कहा वकिसरतु सदका, कसरत के साथ सदका। कहाँ ले जाओ बात को, ये सदका लफ्ज है ने उसमें एक लफ्ज समाया हुआ है, वो है सिद्क। ये सदका जो है ना, हमने तो उसको पैसा आने बकरा आने वो ही समझा है। सल वाला मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो तीन चीजें, किसरतुल इस्तग़फ़ार, लीनुल जानिब और किसरतुस सदका, कसरत के साथ सदका देने का। इससे क्या होगा, बंदा खुशनुदिये परवरदिगार की तक पहुंच जाएगा। आज जिसका तज़किरा करना है।

आपको वहां खुदा की खुशनुदी कहीं दिखाती दिखते में आती है? आज कोई एक इंसान है, कोई एक शख्सियत है जो अपना सब कुछ कुर्बान कर कर जबान पे एक जुमला लाते हैं, क्या? रिदन बेकदाई ही।

उसको बयान करते हैं। इस जुमे के दिन इमाम के नाम से मंसूब इस लम्हात में उनके हुजूर तसलियत पेश करने के लिए, उनके साथ तजदीद अहद के लिए, अपने वादों को दोबारा दोहराने के लिए, उनकी नुसरत की और उनकी हिमायत की जो हमारी कोशिशें हैं उनको और ज़्यादा तेज़ करने के लिए, उनके ज़हूर में ताजील के लिए, और इंशाअल्लाह खुदा हमें उनकी नुसरत की राह में शहादत नसीब फरमाए, इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए दुरूद भेजें मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। खुदा मुताल की दीवी तौफीक से अहले बैत अतहार की ज़िक्र की ये सआदत हमें और आपको नसीब हुई माह मुहर्रम के अंदर, और अल्लाह का करम है, खुदा मुताल का एहसान है कि उसने हमें और आपको अहले बैत से मुत्तसिल होने का ये मौका नसीब किया। हमने जिस मौजू का इंतखाब किया था, चूँकि आज अब इस सिलसिले की तकरीबन आखिरी मजलिस बन जाती है, ज़ाहिर कल मसाइब के दिन होगा और परसों फिर बहुत समझ लीजिए कि लोगों की ज़ाहिर ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो फिर हाज़िरी इतनी नहीं रहती। तो ये जो आज की मजलिस होती है ये ऑलमोस्ट इस सिलसिले में मौजू को आखिर तक पहुँचाने की होती है। तो मुझे तमहीद में भी कुछ नहीं जाना है बल्कि इस मौजू को एक नतीजे तक पहुँचाना है, उससे हमें कुछ रिज़ल्ट लेना है। मौजू क्या था और हमने क्या अर्ज़ किया उसको बहुत ब्रीफली कहते हुए इंशाअल्लाह कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स हमने हासिल करने हैं। दुरूद भेजेगा मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। इब्तिदा से ही हमने इस बात के ऊपर इसरार किया कि हमें अपने इमाम की नुसरत के लिए तैयारी करनी है। इब्तिदा की पहली दो मजलिसों में हमने इस बात की अहमियत को दोहराया कि अगर खुदा न करे नऊज़ु बिल्लाह नुसरत न कर सके और हम एक न्यूट्रल के तौर पर चीज़ों को देखते रहे तो ये कितना बड़ा नुकसान है। यानी काबिल तसव्वुर नहीं है कि कोई शख्स पूरी ज़िंदगी या हुसैन करे और उनके जद्द अमजद से रसूल खुदा से वादे करे या लैतनी कुंतु माहुम या माकुम कहे और जब मौका आए तो वो साथ न दे सके, ये तबाही है। हमने अर्ज़ किया कि इस तबाही में बहुत सारे लोगों ने मुब्तला होना है। क्यों? रिवायात मौजूद हैं कि तुम लोग कट जाओगे, तुम लोग छन जाओगे, छनते रहोगे, फिल्टर होते रहोगे, फिर थोड़े से रह जाओगे। फिर हमने ये बात दोहराई कि ये कैसे होता है कि इंसान फैसले करता है, इसके ऊपर हमने तीन चार मजालिस तफसील से अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, ये मैकेनिज्म क्या है। और उसके ऊपर बात हुई कि नॉलेज काफ़ी नहीं है, नॉलेज के साथ जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो कल्ब है, और कल्ब हमारी प्रैक्टिसेस का सेंटर है। यहाँ पे हमने कहा तीन फंक्शंस यहाँ पे अंजाम पाते हैं, एक तो कि यहाँ पे तमाम हमारे आमाल स्टोर होते हैं, दूसरा यही कल्ब हमारे हमें फैसला करने में बेस देता है, और तीसरी बात यह थी कि ये कल्ब एक सोर्स होता है ख़ुद नॉलेज का, ये नॉलेज की एक सोर्स है। तो अगर खुदा न करे नाऊज़ु बिल्लाह प्रैक्टिसेस में गलती हुई तो कल्ब में ख़राबी आएगी, और कल्ब में ख़राबी आई तो फिर फैसले सही नहीं होंगे, और नॉलेज खुदा न करे कम आने के बजाय ऐसा ना हो ब्लॉक हो जाए बिल्कुल। उसके ऊपर आपकी खिदमत में हदीसें भी अर्ज़ की, तफसील से इसके ऊपर बात की, फिर कुछ कानून भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किए, और उसमें अर्ज़ किया कि भाई अपनी ज़िंदगी में अगर खुदा का हुक्म छोड़ कर किसी चीज़ के पीछे भागे उस चीज़ से ज़िल्लत आएगी, उससे अच्छाई नहीं आएगी। एक हदीस सैयदुश्शुहदा की है, शबे आशूर भी है, मौला का ज़िक्र भी है। एक हदीस मौला से आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, दुरूद भेजे मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। रिवायत में इस तरह से आया है कि कतब रजुलुन इलैहि, किसी मर्द ने सैयदुश्शुहदा को कोई लेटर भेजा, ख़त भेजा, और उसमें कहा अइज़नी बे हरफैन, मुझे सिर्फ दो जुमलों से एक नसीहत करें। उसने कहा मुझे नसीहत करें, थोड़ी सी नसीहत दो जुमलों में बस। इमाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया, ये जुमला लिख के भेजा, मन हावला अमरन बे मासियतिन, जो शख्स गुनाह

करके किसी चीज को लेने की कोशिश करें। अच्छा, अभी फौरन हमारा ध्यान कहेगा कोई क्यों गुनाह करके लेने की कोशिश करेगा, बहुत है। जो सुबह को नहीं उठता नमाज पढ़ने के लिए डेलिबरेटली, वो क्या प्लान कर रहा है? उसकी प्लानिंग ये है कि मुझे जिस्म को आराम देना है गुनाह करके, ये उसका प्लान है। जो गलत चीज़ें फाहशा स्क्रीन्स पे देख रहा है, इसका क्या प्लान है? इसका प्लान ये है कि मुझे अपने आप को फ्रेश करना है या एंटरटेन करना है गुनाह करके। तो ये कोई बहुत कोई स्ट्रेंज सी बात नहीं है, ये वो है जो हो रहा है। मन हावला आमरन बेमासियतिन, जो गुनाह करके किसी चीज़ की कोशिश करे, काना असरा लिम अस अफवत लिमा यरजू, जिस चीज़ को लेने की कोशिश करेगा ये बहुत तेज़ी से इसके हाथ से निकल जाएगी। वह असरा लिमजी मा या हजुर, और जिस चीज़ से डर रहा था ये और तेज़ी से इसके पास आएगी। अब खुदा न करे इस मिसाल के अंदर मैंने सोचा था कि मैं जिस्म को आराम दूँ नाऊज़ु बिल्लाह ताला एक गुनाह करके, अब इस बात को इस बंदे को तैयार होना चाहिए इसी जिस्म से बीमारी आनी है, यहीं से आनी है। ये मुश्किल है। और क्या होगा, जिस चीज़ से डर रहा था ना और तेज़ी से आएगी। ये किससे डर रहा था? ये डर रहा था कि मिसाल के तौर पर मैंने अगर ये कर दिया तो मेरी जॉब निकल जाएगी, ये कर दिया मैं रेस्टलेस हो जाऊंगा, मेरा बिजनेस ये हो जाएगा। जिस चीज़ से डर रहा था अब उसी ने आना है और तेज़ी से। बस इमाम ने फरमाया जिसका तुम लेना चाह रहे थे तेज़ी से तुम्हारे हाथ से जाएगी, और जिससे तुम डर रहे थे वो और तेज़ी से तुम्हारी तरफ आएगी। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये बंदा रियलाइज करेगा कि क्यों आई है? नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरा कानून इसके ऊपर लगेगा। वो कौन सा कानून था? कि जब तुम अमल नहीं करोगे तो जो इल्म तुम्हारे पास है वो हाथ से चला जाएगा। अब ये कभी नहीं मानेगा कि ये जो मुसीबत आई है ये इसलिए आई है कि मैंने गुनाह किया। ये आखिर वक्त तक बोलता रहेगा असल में मैंने डिग्री मेरी अच्छी नहीं थी ना, इस वजह से मुझे ये मुश्किल आई है। ये 10 चीज़ें लगाता रहेगा, कभी ये नहीं मानेगा ये गुनाह से हुआ। हाँ, ये जहालत आती है। मैंने आपकी खिदमत में कई रिवायतें अर्ज़ कर दी कैसे जहालत आती है। अब मैं उन सबको नहीं दोहरा सकता, समरी की तरफ जाना था। फिर हमने इस बात के ऊपर अर्ज़ किया कि जो सबसे बड़ा थ्रेट है जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी कौम, हर कौम का इज्ल होता है, बछड़ा होता है जिसको सामरी ने बनाया था, जिसके सामने लोगों ने सर झुकाया था, का हर कौम का इज्ल होता है और मेरी कौम का इज्ल पैसा है, ये इसके सामने सर झुकाएंगे। इसको तफसील से अर्ज किया कि ये पैसे के सामने सर झुकाना कुरान की रोशनी में कैसे है। कल आपकी खिदमत में तफसील से 6 आयतें पढ़ी और उनके अंदर वो पूरा सोशल मैकेनिज्म सामने आ गया कि जब पैसे वाला आता है तो कैसे कौम पहले सही थी फिर डिवाइड होती है, और जो चीज़ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर था वो क्या था? वल्लज़ीन उतुल इल्म, जिन्हें इल्म मिला था। कौन सा इल्म? वो जो सईद शुहदा का फरमान था, वो ज़हन में रखिएगा कि अगर तुम अपनी मालूमात पर अमल करो जो खुदा ने तुम्हें इल्म दिया है तो खुदा तुम्हें वो इल्म देगा जिसमें जहालत नहीं आती है। जिनके पास वो इल्म होता है वो इस क्रिटिकल टाइम के ऊपर फौरन समझ जाते हैं कि अब हम स्लिप कर रहे हैं, हमें यहाँ रुकना है। और बाकी लोग वो फिरौन को देखते हैं और क्या कहते हैं, या लैत लना मिस्ला मा उतिया फिरौन, काश हमारे पास भी यही गाड़ी होती, यही घर होता, यही स्टेटस होता। सिर्फ थोड़ी सी देर की बात है, खसफ ना बही व बिदार हिल अर्ज, थोड़ी सी देर की बात है। औलुल इल्म उसके ज़मीन में दबने से पहले समझ गए थे, जाहिल उसके ज़मीन में समझने के बाद देख पाए थे। हम और आप इन बिटवीन टाइम में हैं। अभी अपनी पार्टी देख लो, हम कहाँ पर हैं? उनके साथ हैं जो कह रहे हैं या लई थल

I can't do. An apple a day keeps the doctor away. Chaho poison bhi le lo. Ye ho sakta. Koi logic support nahi karti. Dua ahad kaam karegi jab tum zahar na khao. Aur zahar kya hai? Imam ki companionship mein aane ke liye beimani zahar hai. Fair kyun nahi hum? Kyunki hame duniya ka khauf hai. Ki agar hum fair honge to duniya hamare haath se nikal jayegi. Usse bachne ke liye gunah karna hai. Man hawala bi ma'siyatin nahi milne ka, milega bhi to musibat aayegi. Ye hum sab ko samajh mein aa gaya. To ab misal ke taur par mujhe kal imam ki nusrat karni hai, main chahta hu imam ke lashkar mein shamil hu, ek ashra iske upar baat kar li, result kya dena hai? Ye result dena hai mujhe. Theek hai, ek do teen karke kuch cheezein arz karta hu, khud bhi amal karne ki koshish karunga, aap bhi amal karne ki koshish karenge inshaallah. Khuda ne mutal kamyabi naseeb farmayega. Durud bheje Muhammad wa ali Muhammad par. Salli ala Muhammad Imad Muhammad wa ajil. Ab mujhe bhi 40 saal ho gaye taqreeban is field ke andar, sahi hai? To bahut sari cheeze maine sochi ki agar koi aadmi apne aap ko improve karna chahta hai to kahan se shuru kare. तो इस 40 इयर्स में कभी मैंने सोचा ये पहले करना चाहिए, कभी मैंने सोचा वो पहले करना चाहिए. मैं आपका टाइम नहीं लूँगा कि मैंने अपनी कितनी गलतियों से सीखने की कोशिश की है. तो अब जो मुझे समझ में आई बात वो ये कि देखो भाई, ये सारा जो काम है ये अस्माए हुस्ना है. हर चीज़ के पीछे अल्लाह के नाम है. सब वो 99 नेम्स हैं, एक्चुअली वो सब कुछ है. और जितना कुछ खुदा ने हमें दीन में हुक्म दिया है वो उन 99 नेम्स को अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना है. दैट्स इट. यही कुर्बतन इलाल्लाह है, यही कुर्बतन इलाल्लाह. तो आप मुझसे कहें मौलाना मैं ये इबादत करता हूँ, तो मुझे चाहिए सबसे पहले अपने आप से पूछूं इस इबादत करने से उन 99 नेम्स में से कौन सा मेरे अंदर रिफ्लेक्ट होगा. ये है असली. अच्छा, अब ये जो नेम्स हैं ये एक दूसरे को भी लेकर आते हैं. खुदा का कानून है कुरान करीम में, मन जा बिल हसनति फलहू आशरु अम्थालिहा. जो एक नेकी करता है खुदा उसको 10 से जजा देता है. ये नेम्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, सही है. शुरू कहाँ से करना है? मैंने पहले भी गौर किया, एक जगह तक पहुंचा, अब यहां पे पहुंचा जो मुझे लग रहा है बहुत सॉलिड हो गया काम लगता है ऐसे. वो क्या है, थोड़ा सा इसको अर्ज करता हूं, दो चार मिनट लेकर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. अल्लाह ना करे भूल ना जाऊं कि मैं किस सीक्वेंस को लेकर चल रहा हूं, लेकिन इंशाल्लाह अर्ज करता हूं. अच्छा, अब मुझे एक बार और कोशिश करनी है, चूंकि पीछे वाले अब मुझसे नहीं कह रहे. ठीक है भाई, मौलाना इनको एक दफ़ा और थोड़ा सा आगे करें. मुझे नहीं पता वहाँ सूरत हाल क्या है, मुझे नहीं पता यहाँ सूरत हाल क्या है. बहरहाल अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ. मुझे ये समझ में आता है, हाँ ये करने से थोड़ा सा जगह बनती है. वो क्या दरख्वास्त है? बहुत बहुत जहमत वाली बात है. वो क्या है, मैं आपसे दुरूद पढ़ने के लिए कहूँगा, जो जहाँ बैठा है वो ज़रा सा खड़ा हो, यानी थोड़ा सा हिले, और फिर देखें कि जगह बनती है नहीं बनती. दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर. एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर. मोहम्मद, आप यकीन मानिए काफ़ी जगह बनती नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फर्ज. और जितनी भी हमने जगह बनाई है पीछे से कमरे दरवाजे से और उतने से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जिसका मतलब ये कि अभी जगह की हमें ज़रूरत थी, अच्छा हो गया कि हमने जगह बनवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह. खुदा खुदा से आप सब की सेहत और सलामती के लिए दुआ गु हूँ. दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर. मोहम्मद मोहम्मद व अज्जिल फर्ज.
ایک عارف مشہد میں

एक दफ़ा दर्स देने गए, उनके लिए एक जगह बना दी गई, वो बैठे, वो उनके आने से पहले हॉल भरा पड़ा था, हॉल भरा पड़ा था। तो उन जब उनको दावत देने लगा जो शख्स, तो वो जो बंदा था वो खादिम था उस जगह का, उसने खड़े होकर लोगों से कहा कि अः लोगों, खुदा तुम पर रहम करे, जो जहाँ है नबी और औलाद नबी पे दुरूद भेजते हुए थोड़ा सा आगे आ जाए, उसने कहा। तो सब लोगों ने दुरूद भेजा, खड़े हुए, दुरूद भेजा, थोड़ा सा आगे आ गए। तो फिर वो आरिफ थे, उनको जब आए तो उन्होंने खुतबा पढ़ा।

उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो भाई, जो कुछ मुझे कहना था वो इस खादिम ने कह दिया है। जो जहाँ है नबी और उनकी आल पर दुरूद पढ़ते हुए थोड़ा सा आके आ जाए। हाँ, صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. अब कोशिश करना 10 मजलिसें सुन के थोड़ा सा आगे आना, थोड़ा सा आगे आना। और एक बात पे आप उम्मीद रखना, आप एक कदम बढ़ाओगे सैयदुश्शोहदा 10 रास्ते खोलेंगे। करीम है, करीम ख़ानदान है, करीम वो होता है। अब मुतमईन रहना इसके ऊपर, सही है? बात क्या करनी थी, बात ये करनी थी, बाद औकात इंसान आदत के अंदर फंस जाता है, एनवायरनमेंट के अंदर। ये इतनी ख़राब चीज़ है जो इंसान सोचना समझना बंद कर दे, जो माहौल कह रहा है करता चला जाए, बहुत ख़राब चीज़ है। मेंढक की मिसाल मैं कभी कभी देता हूँ। एक मेंढक होता है, उसको पानी में डाल दो, ठंडे पानी में बैठा रहेगा, फिर उस पानी को गर्म करो, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ाओ, इसको पता भी नहीं चलता पानी बॉयल हो जाता है, ये बॉयल होके मर जाता है, छलांग नहीं मारता। अगर इसको डायरेक्ट गर्म पानी में डालें ना, फौरन छलांग मार के भाग जाता है। लेकिन अगर ग्रेजुअली पानी को गर्म करें, इसको पता नहीं चलता। हम में से बहुत सारे लोगों के सेंसर्स इस ग्रेजुअल चेंज को पकड़ने के काबिल नहीं है। इसलिए खुदावंद मुताल ने कहा है कि मेरी किताब तुम्हारे हाथ में रहे, ताकि अगर तुम्हें ग्रेजुअली कोई चेंज करे तो तुम फौरन पकड़ लेना। वो हम पढ़ते नहीं हैं, उससे सीखते नहीं हैं। फिर नबी की सुन्नत, अहले बैत की सीरत, सब हमारे पास मौजूद है। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड्स हैं, स्केल्स हैं, इनसे नापो। उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर ये क्या होगा? फिर ये होगा कि जो हमें जो सिखाता चला जाएगा, हम कहेंगे ये इनएविटेबल है, हमारी सोसाइटी में फाहशा फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, नॉर्मल हो गया, सब कबूल कर रहे हैं, फील नहीं कर रहे कि भाई हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सही है? तो अभी हमें इमाम की नुसरत करनी है, ऐसा ना हमारा डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाए। तो कहाँ से शुरू करें? बिला किसी तंबी। अब बहुत मैंने बातें कर ली, अब मसाइब की तरफ लेके जाऊँगा आपको अल्लाह के इज़्ज़त से। जो शुरू करना है वो ये कि मेरे और आपके दिल में हमदर्दी हो। जिस दिन आप ये देखें ना कि मैं इस इंसान के लिए तो हमदर्द हूं, इस इंसान के लिए हमदर्द नहीं हूं, आप फौरन समझ जाइएगा मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूं। क्यों? आप उम्मत हो उस नबी की जो रहमतुल लिल आलमीन है। वो रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी उम्मत में बेरहम इंसान ने नहीं आना है। अगर मुझे नबी की उम्मत में रहना है, उनकी औलाद की इताअत के अंदर रहना है, मुझे अपने दिल को रहम दिल बनाना है सबके लिए। आप कहेंगे दुश्मनों के लिए भी, तुम खुद देख लो, सैयदुश्शोहदा दुश्मनों के लिए भी रहम दिल थे या कुछ और? नहीं, कुछ और नहीं था, हम मालूम है रहम दिल थे। जो कर रहे थे उस रहमदिली से कर रहे थे जो उनके दिल में था। अब ये रहमदिली सबसे पहले मेरे और आपके दिल में होनी चाहिए। तो आप, अब मैं, अगर हम इसको करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुदा की जो सबसे बड़ी सिफत है, अलबत्ता कोई क्या खुदा की सिफतों में बड़ा छोटा नहीं होता, बड़ा छोटा मैंने अपने अल्फाज में कहा है, खुदा नुमतान ने कुरान करीम में फरमाया कतब आला नफ्सही अर्रहमा। तो सबसे अहम चीज़ जो खुदा ने अपने लिए रखी है वो रहमत है। ये रहमत अगर मेरे और तुम्हारे दिलों के अंदर नहीं है, बाकी असमा नहीं आने हमारे अंदर। अब आप देख लो, आपको जानवरों के लिए भी रहम दिल होना चाहिए, पौधों के लिए भी रहम दिल हो जाओ। अब आप कहेंगे मसलन जानवरों के लिए रहम दिल हो तो हम वेजिटेरियन हो जाएं? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। बेरहम नहीं बनो, खुदावंद मुताल ने जिस जानवर के लिए जो काम रखा है उसको, उसके ऊपर जुल्म मत करो, आप जुल्म नहीं करो। अल्लाह के नबी जानवरों पे भी जुल्म होता देखते थे, बोलते थे ये क्यों कर रहे हो ऐसे।
شب شہادت مولا امیر المومنین کا آپ نے دیکھا کیا کیا مان. اللہم صل علی محمد و آل محمد و

तीसरी बात क्या चाहिए थी? अमानत। ये पूरा पैकेज है, 99 नेम्स इसके पीछे हैं, 99 नेम्स इसके पीछे हैं। तो अगर बेरहम है, सदाकत नहीं आ पाएगी, अमानत तो भूल जाए फिर। जो झूठा है वो कहाँ अमानत दिखाएगा? झूठा अमीन कहाँ हो सकता है फिर? जो सच्चा होगा उसका चांस है कि वो अमानत दिखाएगा। तो आप और मैं अगर इमाम की नुसरत के दावेदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, और जाना चाहते हैं इमाम के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इन तीन सिफतों पे काम करो, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि मैं कहूँ मैं यहाँ बैठ के हूँगा, वहाँ बैठ के नहीं हूँगा, यहाँ पर हूँगा, पाकिस्तान में नहीं हूँगा, नहीं। ये जनरलाइज्ड है। इसके पीछे मेरी दुनिया चली जाएगी, जाने दो। मन हावल अमरन बेमासियतिन, रिवायत जहन में रहे, जाने दो, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। ये मैं बाद में कहता हूँ, पहले कहता हूँ जाने दो, हौसला बनाओ कि जाने दो, लेकिन बाद में कहता हूँ कहीं नहीं जाएगी, ये आ जाएगी। अल्लाह के नबी को वो फरमान जहन में रखिएगा, अलैका बिल आखिरत अतिका दुनिया सागिरा, तुम आखिरत की परवाह करो, दुनिया जलील होकर तुम्हारे पास आएगी। तो आयज़ान मोहतरम, ये लुब लुबाब था उन तमाम चीज़ों का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, और जो बहुत बड़ा वसीला ज़रिया आपके पास है, वो अपने हद में अल्लाह ने हमें एक ताकत दी है जिसको कंट्रोल कहते हैं। आसमान से नुसरत दी है, आसमान से नुसरत दी है शफाअत के ज़रिए से, तोबा के ज़रिए से, इस्तग़फ़ार के ज़रिए से। खुदा ने सारे वसीले हमें दे दिए। हर रोज़ कम से कम 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करें, सहर के टाइम पर एनलाइटमेंट आएगी, गाइडेंस आएगी। 11 मुहर्रम को जो मजलिस होगी इस सिलसिले की यहाँ पे आखिरी, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट और अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ज़ाहिर है आप में से बहुत सारे लोग शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन बहरहाल मैं अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अब इस वक्त यहाँ पर तमाम कोशिशें करने के बावजूद कि मैं पूरे वक्त सोचता रहा कि मैं इसको फोकस रखूँ इस बात के ऊपर कि आज शब आशूर है, मुझे अपने टॉपिक को कंप्लीट भी करना था और मुझे उस तरफ भी जाना था और मसाइब के लिए वक्त, आज शब आशूर है। अल्लाहु अकबर, बिल्कुल मगरिब के नज़दीक हैं, एक घंटा पहले वक्त के इमाम से मंसूब है। सिर्फ इतना अपने दिल में सोचना, आज हम मौला अली असगर के मसाइब पढ़ेंगे, यहाँ पे मौला अली असगर के मसाइब पढ़ेंगे। हम लोगों के लिए वाकई करबला सुना हुआ है और पढ़ा हुआ है, हमारे लिए वाकई करबला सुना और पढ़ा हुआ है, इमाम के लिए कैसा है? अभी हम लोग जब मसाइब सुनते हैं, हमारे सीनों में आग लगने लगती है कि क्या हुआ ये। वक्त के इमाम के लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे अली असगर को तीर उनकी आंखों के सामने लग रहा है। ये हमारे लिए नरेशन है, उनके लिए नरेशन नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे मैदान में मौजूद है और इस बात के मुंतजर हैं। अपने जद्द अमजद से खिताब करते हैं ज़ियारत नाहिया में, कहते हैं मेरे जद्द अमजद में मुंतजर हूँ कि कब मैं आऊँ, आपके ऊपर होने वाले जुल्म का बदला लूंगा। अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के रौज़ात के ऊपर मामूलन सुर्ख परचम रहता है। सुर्ख परचम किस बात की अलामत है? इस बात की अलामत है कि एक खून बहा है जिसका बदला नहीं हुआ है अभी, एक खून बह गया है। आज की जैसी रात में जब मसाइब बयान करने लगूं, और हम जब मसाइब पढ़ने लगते हैं तो किसी एक शख्सियत को फोकस भी कर लेते हैं। मसलन कल आपने देखा, जब मैं मौला अली अकबर के मसाइब पढ़ रहा था तो मैंने सैयदुश्शुहदा के कल्ब मुकद्दस को फोकस किया हुआ था। नहीं मालूम हज़रत अली असगर के मसाइब में किसके दिल के ऊपर नज़र रखनी है, किसके दिल को देखना है।

चला रहे थे। मुझे कैसे सुकून मिल सकता है जब मेरे इमाम को ये अहले कूफा समझ ही ना पाए। वही इमाम जिसे इन लोगों ने दावत देकर बुलाया था, मगर उनके इस तगासा पर लब्बैक नहीं कही। मैं उम्मे रुबाब अपने मौला की आज़ादार हूँ और रुबाब बिन मौला के साये को कभी भी पसंद नहीं करती। एक और खातून ने पूछा, रुबाब अपने 6 महीने के बच्चे के बारे में तो बताएं। रुबाब ने चादर सही करते हुए कहा, मेरे लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की और क्या बात हो सकती है कि मैंने अपने बेटे को राह हक में फ़िदा कर दिया। जिस किसी ने भी हुसैन के रकाब में जान दी उसे खैर कसीर नसीब होगा। रुबाब ने बस इतना कहा और आहिस्ता आहिस्ता अपने पारे तन के मसाइब जेर लब दोहराने लगी। जब उसके होंठ सूखे हुए थे और उसकी बंद आँखें अपने माशूक के ख्यालात में खोई हुई थीं, तो वो अपने इश्क में मशगूल मुझे अलविदा कहना भी भूल गया। मैदान करबला खाली हो चुका था। सिपाहे हुसैनी में बस हुसैन बाकी रह गए थे। अहले हरम ने इमाम के गिर्द घेरा डाला हुआ था। या अबा अब्दुल्लाह, आपके बाद ये लोग आपके अहले हरम पर रहम नहीं करेंगे। इमाम उन्हें सब्र व तहम्मुल की नसीहत कर रहे थे और उनसे ये वादा कर रहे थे कि उनके सब्र व तहम्मुल का अज्र खुदा उन्हें बहिश्त में देगा। इमाम की आंखों में बस रज़ाए खुदा थी और होंठों पर अहले हरम के लिए तसल्लियाँ। हुसैन देख चुके थे कि उनके साथी कैसे टुकड़े टुकड़े हुए थे। उन्होंने मुशाहिदा किया था कि उनके बेटे, भाई, उनके भतीजे और भांजे किस तरह शहीद कर दिए गए थे। वो दुनिया के तमाम तर रंजो गम का मज़ा चख चुके थे। हर उस साथी का गम उन्हें मिल चुका था जिसको वो चाहते थे, जिससे मोहब्बत करते थे। लेकिन फिर भी हक की राह में मोहकम और उस्तवार खड़े अपनी शमशीर तैयार कर रहे थे। उम्मे रुबाब कुछ फासले पर खड़ी अपने मौला को देख रही थी जो जंग की तैयारी कर रहे थे। अब उनके पास कोई ऐसा मर्द नहीं था जिसे वो अपने मौला पर कुर्बान कर देती। अली असगर तो बस 6 महीने के थे जो प्यास की शिद्दत से जान बलब थे, लेकिन इस शोर व गोगा में कौन था जो हुसैन से पानी के लिए कहता। रुबाब अपने नन्हे अली असगर को सीने से चिमटाए हुए अपने मौला की खुशबू को अपने बेटे में मुंतकिल कर रही थी। उम्मे रुबाब ने अचानक मौला के उदास जुलजनाह को देखा। वो जान चुकी थी कि अब उनके मौला उन्हें नाम लेकर नहीं पुकारेंगे। मैदान के उस तरफ उमर साद ने शिम्र से वादा किया हुआ था, हुसैन के बाद तेरी दुनिया आबाद है और करबला की बस ये आखिरी लड़ाई है। शामी और कूफी हरम को गारत करने की तरकीबें बना रहे थे और मुसलसल इस बात पर कहकहे लगा रहे थे कि हमने हुसैन और उनके असहाब का किस्सा तमाम कर दिया। उनसे कुछ दूर एक माहिर निशानाबाज बैठा हुआ था जिसकी आंखें इंसानी आंखें नहीं थीं। वो हुसैन के लिए तीर आमादा कर रहा था। हरमला बिन काहिल इस जंग में मौजूद अश्किया में सबसे ज्यादा शकी और सबसे बेरहम आदमी। उसके तीरों में तीरे से शोभा मौजूद था जिसे उसने हुसैन के लिए तैयार किया था। किसे मालूम था यह तीर किसको कत्ल करने के काम आएगा। इमाम अहले हरम के एक एक फर्द से अलविदा कह रहे थे, लेकिन रुबाब में जुदाई की ताकत कहाँ थी। जैनब ने आगे बढ़कर बच्चे को माँ की गोद से लिया और बाप की आगोश में दे दिया। अली असगर प्यास की शिद्दत से जाँ बलब थे। भूख प्यास की शिद्दत से बच्चे की जबान किसी मछली की तरह बाहर आ रही थी, जैसे वो जान देते हुए मुंह खोलती और बंद करती है। और कौन है जो मछली के तड़पने को समझ सके। हुसैन ने बच्चे के रुखसारों को देखा और फिर गम की शिद्दत से अपनी आंखों को बंद कर लिया। खुदा की हमद व सना की और चंद कदम आगे बढ़ गए। दुश्मन की फौज पर सन्नाटा तारी हो गया। इमाम ने अली असगर को हाथों पर बुलंद किया। उनके सबसे छोटे बच्चे की तशनगी दुश्मन की शकावत को आश्कार कर रही थी। दूर खड़ी उम्मे रुबाब अपने बच्चे को बाप के हाथों पर बुलंद होता देख रही थी। इमाम की आवाज़ बुलंद हुई कि ऐ जालिम कौम, तुमने मेरे सारे ही साथी छीन लिए, मेरे सारे असहाब, मेरे भाई, मेरे बेटे। अब मेरे पास यही 6 महीने का बच्चा बाकी है
کہ جسے پیار

प्यास की शिद्दत मारे डाल रही है। इसे एक घूंट पानी से ही सैराब कर दो, तुम्हारी जंग मुझसे है, इस बच्चे से तो नहीं। उमर साद ने झिंझला कर हरमला को आवाज दी। हरमला उठा, नजदीक आया, कुछ इस तरह कि उसके कदम जमीने करबला को भी शर्मिंदा कर रहे थे। उमर साद ने हरमला को हुक्म दिया, हुसैन का काम तमाम कर दो। हरमला ने फौरन तीर से शोभा कमान में जोड़ा और सवाल किया, बेटे को या बाप को? इब्ने साद ने जवाब दिया, बच्चे को निशाना बनाओ, क्योंकि उसका दाग हुसैन के बदन पर लगने वाले तीरों से कहीं ज्यादा है। कमान खींची, तीर फेंका गया, तीर कमान से निकलकर शिशमाहे की गर्दन में पैवस्त हुआ। और आसमान पर फरिश्ते नन्हे अली असगर को आगोश में लेने की तैयारियां करने लगे। जमीन पर अली असगर अब अब्दुल्लाह हुसैन के हाथों पर मचल उठे। ठहर गए जमीन और जमान। हुसैन ने तीरे से शोभा को अपने बेटे के गले में पैवस देखकर शुक्र खुदा अदा किया। उसके बाद अली असगर के गले से बहते हुए खून को चुल्लू में भरा और आसमान की जानिब फेंक दिया। फिर सर को उठाया और फरियाद की, खुदाया तू गवाह रहना, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तेरी आंखों के सामने है।

0: पर्दे के पीछे से देखने के बाद भी डर रहा था कि कहीं नजर न लग जाए।
1: खुशहाल रहो बरखुरदार के खुद ही शिकार किया और अभी भी बेखबर हो।
2: बहुत खूब के यजीद के चंगुल से बची और फौज के कमांडर को फंसा लिया। मेरी बहन मेरी तरफ देखो।
3: जालिम के सामने जरूर आता है। एक बात जान लो, सामिया ने इस खानदान को बेटा नहीं दिया बल्कि इससे बेटी ली है।
4: मैंने मक्का जाने वाले कारवां में पहले से ही दो जगह खाली रखी है।
2: बाबा आपने मेरी मुहाल आरज़ू को मुमकिन बना दिया।
5: किसे ढूंढ रहे हो नईम?
4: कूफे का चप्पा चप्पा तलाश करो और उसे ढूंढो। जब तक मिल ना जाए वापस ना लौटना।
1: अम्मी से मुलाकात नहीं करना चाहते।
6: चाहता हूँ लेकिन दादाजी आप।
1: औहद क्या?
6: हमेशा अम्मी पर चिल्लाते रहते थे आपकी तरह, इसलिए वो चली गई है।
3: जाओ खत उसके मालिक तक पहुँचाओ, शायद दूध बख्श दो।
4: बीवी की तलाश में आए हूँ, देर कर दी। उसे राम करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, खुद उसे राम कर दिया।
1: राम कर दिया तो अभी कहाँ है मेरी बीवी, कहाँ है वो?

0: बड़ी बेबसी है। अफसोस कि मैं उनका कुछ नहीं कर सकता।
1: उसकी कब्र का तो निशान भी नहीं है कि मैं उसके पास जा सकूं। जब तक थी दिल को बड़ी धारस थी। मैं कितना बेगैरत इंसान हूं।
0: बच्चों का क्या करूं?
1: जुदाई का दर्द कैसे बर्दाश्त करूं? काश मैं पैदा ही ना होता मां।
0: कैसे पता? शायद आप उससे ज्यादा परेशान हो और मुझे पता ही ना हो। अभी आपकी जुदाई का जख्म नहीं भरा था कि उसने आपकी कनीज से शादी कर ली और ये बेटी भी हो गई।
1: आपकी मजलूमियत मुझे मार डाल रही है कि आपका मकाम भी एक कनीज ने ले लिया। इस बदकिस्मती और मजबूरी से तंग आ गया। मुद्दा तो ना समझी के रास्ते पर चलता रहा, ना कुछ कहा ना कुछ सुना। माँ दुआ करिए कि अलवान के सामने खुद को बहादुर बाप दिखा सके।

ताकि एक बेटा आप में से सीखे कि बेजा किसी की इताअत नहीं करनी चाहिए। कहाँ हो नईम की माँ।

0: पांच सिक्के तुम्हारे और एक सिक्का मेरा, तीन सिक्के तुम्हारे लिए, दो सिक्के मेरे लिए, काफी है?
1: कम है।
0: सब ले लो, अकेले ना खाना। जो काम भी करो अपने भाई का ख्याल रखना, उसका हिस्सा ना भूलना।
1: क्या इतने सिक्कों से शाम जा सकते हैं दादा जान?
0: मैं जो कहता हूँ अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, पूछते हो कैसे? बजाय उसके कि सफर की तैयारी करो और सिक्कों को बर्बाद करो। उसका आधा सिक्का नामुसान को दो और बाकी में खुद ऐश करो।
1: शुक्रिया।
0: दो सिक्के तुम्हारे, दो सिक्के मेरे।

0: आराम से ठीक है।
1: अरे देख क्या रहे हो, तो नीचे उतारो।
2: सलाम।
3: सलाम।
2: आप तीरंदाज है ना?
3: हाँ।
2: वाकई तीरंदाज है?
4: तुम भी तो तीरंदाज हो प्यारे बच्चे।
2: हाँ, मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर एकदम इनकी तरह मुहाफिज बनूं।
0: अरे बेटा, मना किया था ना मुहिबे अली के सिवा किसी से बात मत करना। चलो यहाँ से, जल्दी चलो, जल्दी।
5: हज का तवाफ सख्त है और तुलानी भी। ये अंजाम देना है, ये नहीं उसमें कहीं तवाफुन दिशा न भूल जाना कि मेरी बेटी ना महरम रह जाए।
6: जनाब आहर, ये अभी जवान भी है और काफी समझदार भी है।
3: शुक्र खुदाया, मेरा पहला हज नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा तो तमाम आमाल को अंजाम।
5: इंशाल्लाह।

0: आपका ख्याल रखना।
1: फोफी।
2: बोलो बेटा।
1: अगर हमारी अम्मी मिले तो उनको ये खत दे दीजिएगा।
2: उन्होंने बताया नहीं था कि वो शाम गई हैं। कुर्बान जाओ, खाने खुदा कहाँ और शाम कहाँ।
1: ये नहीं बताया कि कहाँ जा रही है, बस बताया कि सफर पर जा रही है।
2: ये खत अपने पास ही रखो, लेकिन वादा करती हूँ कि अगर तुम्हारी माँ से मिली तो उनका हाथ पकड़ कर घर वापस ले आऊंगी। वादा।
0: अलवान बेटा, मेरे पास आ जाओ। अभी ने वादा किया है ना बेटा। अब परेशान मत हो तुम, शाम तक खत को भेज देंगे ताकि तुम्हारी माँ तक पहुँच जाए। ठीक है।

0: Διαρροζό.
1: परेशान हो? कोई बात बुरी लग गई क्या?
2: नहीं, तय ये था कि घर वाले खुदा हाफिजी के लिए आए ना कि ये।
3: माल कुफ्र वला यबका मा जुल्म, शायद कोई हुकूमत कुफ्र के साथ बाकी रह जाए लेकिन जुल्म के साथ टिक नहीं सकती।
4: जुल्म के साथ टिक नहीं सकती।
5: जुल्म मिट के रहेगा।
6: जुल्म मिट के रहेगा।
5: जुल्म मिट के रहेगा।
7: खामोश हो जाए, शोरगुल से कोई काम नहीं बनने वाला। कोई एतराज है तो गवर्नर से बात करनी होगी, नहीं तो उससे ऊपर अपनी बात को पहुंचाएं। हम सिर्फ यहाँ निगहबान हैं और ये जिंदान है दारुल हुकूमत नहीं। जाए यहाँ से, चले जाएं, चले जाएं।
3: जैद, तुम अलवियों के दस्तरखान के टुकड़ों पर ही पले बड़े हो, नमक हमारा खाते हो और तुम उन नासेबियों की तरफदारी कर रहे हो। हाँ,
8: अगर जनाब हम रह गए तो कयामत आ जाएगी। चले जाओ यहाँ से।
9: क्या बकवास कर रहे हो? कबीले के नौजवान बिला वजह कैद हैं और तुम्हें तो मैंने बचपन से ही पाला है। तुम चाहते हो कि तुम लोगों की आवाज दबा दो? कब तुम्हारे दिल रोशन होंगे अल्लाह ही जानता है।
3: हे इब्ने ज़ैद, तुमने थोड़े से सिक्कों के एवज में खुद को बेच डाला, अपने बीवी बच्चों का पेट बेगुनाह कैदियों की दाद और फरियाद से भर रहे हो तुम। क्या सुन्नते नबी से यही सीखा है तुमने?
9: सिक्के चाहिए, ये लो,
3: ये लो,
9: ये सिक्का लो और अपना रिश्ता तोड़ दो। हुकूमत तुम्हारी वजह से टिकी है,
3: ये लो।
9: तुम अगर यहाँ रुकावट ना बनो तो ये हुकूमत ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। हटो यहाँ से, हमारे रास्ते से हटो।
3: खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा।
5: जुल्म
3: मिट के रहेगा।
5: जुल्म
3: का खात्मा होकर रहेगा।
1: इस बच्ची का ख्याल रखिएगा।
3: दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़ दो। तोड़ दो दरवाजा।
10: इन हाथों का अल्लाह के घर को छूना वो सआदत है जो हर किसी को नहीं मिलती। मेरी बेटी नायला, वहाँ पहुँच के मुझे भूल ना जाना तुम। अगर दिल तंग हो और इस कनीज की आगोश ना मिले तो ये शाल पहन लेना, ये मेरी याद दिलाएगी तुम्हें। तुम्हारे वापस आने तक ये तुम्हारे हाथों अमानत है। ये पहला कपड़ा है जो तुम्हारे वालिद ने मेरे लिए खरीदा और मुसलमानों के मुताबिक मेरे पर्दे का इंतज़ाम किया। ये नायला की सबसे कीमती अमानत है जो तन्हाई के वक्त आपका पूरा साथ देगी। जल्दी आ जाऊंगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
3: अल्लाह की नुसरत और फतह करीब है। अल्लाह की नुसरत और फतह करीब है।

0: जनाब अम्र सुनिए।
1: क्या हुआ?
0: सुनिए, गजब हो गया।
1: ठीक से बताओ क्या हुआ है।
0: लोगों ने यानी अलवियों ने गजब ढा दिया, जंदान का दरवाजा तोड़ के कैदियों को रिहा कर दिया है।
1: जल्द से जल्द दरवाजा बंद कर दो, कोई यहाँ से बाहर न जाने पाए।
2: कहाँ? सब लोगों को मायूस हो जाना चाहिए कि जनाब नुमान को हुकूमत चलाने की कुदरत नहीं है। जिंदान के दरवाजा टूटने का खानाए खुदा के मुसाफिरीन से क्या रब्त है?
3: हज का कारवां है मर्द मुसलमान, देर से निकलेंगे तो रात हो जाएगी।
4: हमें ना रोको अमीर, जानते हैं आज के दिन के लिए कितना इंतजार किया है हमने।
0: अल्लाह के घर जाना हमारे लिए हराम क्यों करते हो?
3: मगर ये तो कोई बात नहीं हुई।
5: जनाब अमीर जल्दी करें, कारवां में जनाब अहद की बेटी भी है, कारवां में कोई भीड़ नहीं है। जनाब अहद, आप कुछ कहते क्यों नहीं, इसका कुछ तो हल निकालिए।
1: अगर छोड़ रहा हूं तो फकत जनाब अहद।
0: जल्दी से दरवाजा खोल दें, चलें आगे बढ़ें।
5: चलो चलो यहां से।
1: अगर छोड़ रहा हूं तो फकत जनाब।
6: हिलाल, अपनी अमानत तुम्हें सौंप रहा हूं। खुदा हाफिज बेटी।
7: इससे पहले कि माहौल खराब हो बेहतर है हम रवाना हो जाएं।
8: लेकिन आया तो अभी तक नहीं आई।
7: बहुत इंतजार कर चुके हैं।
0: चलें, छोड़े उन्हें, चले चले चले चले।
9: कहाँ चले? अभी तो कोई नामा बता भी नहीं मिला।
0: चले, छोड़ो उन्हें, चले।
8: संभल के जाना।
7: इससे ज्यादा रुकना ठीक नहीं है, चले सवार हो जाओ।
10: किस बासित को ढूंढ रही हो?
11: बासित खुरासानी, अरब नहीं था, अजम था। बड़ी बड़ी आंखें और कद आप ही की तरह था।
10: पहचानता था?
11: पहचानते थे, यानी यहाँ नहीं है।
10: बाबा जरा आप जरा सब्र करें, हम सबको आजाद करवाएंगे।
12: बहन दरअसल बात यह है कि काफी दिनों पहले उसे यहाँ से ले गए।
13: यहाँ नहीं रुकना चाहिए।
11: कहाँ ले गए हैं? कुछ बताया नहीं।
12: इस जिंदान की अज़ियतें सख्त भी हैं और जानलेवा भी।
10: यहाँ से चली जाए।
11: क्या मतलब?
10: इतनी सख्त हैं बहन कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस बच्ची को यहाँ से लेकर चली जाइए।
14: अभी यहाँ नहीं रुक सकते, अभी यहाँ से चलना चाहिए।

0: से ज्यादा मेहरबान खुदा, इनका सफर बखैर हो। ये आपकी अमानत है या अली, या अली।
1: मैं नहीं जाऊंगा, कहा ना आपसे।
2: बस करो,

0: आता है। वहां जाकर बहुत अच्छा लगा।
1: काश मैं उसके पास होता।
2: तुम अब ये कह रहे हो इलान? ये तो कारमा चलने से पहले बोलना चाहिए था ना।
1: बात बहुत आसान है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मर जाऊं, लेकिन मुंह ना खोलूं कि क्या देखा और क्या हुआ।
2: जितना भी ज्यादा सख्त हो, तुमसे सुनना फिर भी आसान था। कम से कम एक सहारा तो था, अब वो अकेली रह गई। पता नहीं क्या होगा उसका।
1: एक तरफ बासित की मौत की बेखबरी थी, दूसरी तरफ तुमसे निकाह करने का मसला। अगर मैं मुंह खोल देता तो हमारा निकाह मुमकिन नहीं होता।
2: अच्छा, निकाह के बाद क्या मुश्किल थी?
1: बाद में मैं नहीं बता सका।
2: वाकई ये इंसाफ था? जरा एक बार खुद को उसकी जगह रखकर सोचो। सिर्फ उस खत की वजह से दो बच्चे यतीम हो गए और एक औरत बेवा हो गई। कुछ भी हो, जिस माँ को मैं पहचानती हूँ वो अपने दामाद के मरने पर इफ्तिखार भी करती है। बासित की मौत के अलावा भी कोई बात छुपाई है तुमने मुझसे? हिलाल, तुम ही मेरी पनाहगाह हो। मेरी दुनिया में ऐसे ही बहुत बेअमनी और तन्हाई है, अब जो है उसको खराब ना कर देना।
1: सोच रहा था कि शादी की रात मैंने हुज्जत तमाम कर दी, लेकिन अभी भी मुझ पर शक है।
2: दरख्वास्त मेरी तरफ से नहीं थी कि आप पीछे हट जाएं।
1: वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम कुर्बानी चाहती थी और मैंने कहा बिस्मिल्लाह।
2: ये क्या बेरुखी है हिलाल? तुम्हारे ख्याल में अगर मैं किसी और का इंतखाब करती तो क्या वो इनकार कर देता? शाबाशी हो मुझ पर कि गुरूर और इज्जत दोनों एक जगह बर्बाद करती।

0: सही तो यह है कि कोई भी मुझे मेरी माँ से ज्यादा नहीं पहचानता। मैंने गैरतमंदी से अपने दिल लगने के बारे में जितना भी उनको बताया, उनको यकीन नहीं आया। वो भी चिल्लाती रही, हिलाल अपने दिल की बात मत सुनो। सही कह रही थी, मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी। मेरे पास जो कुछ भी था सब तुम्हारे इश्क पर कुर्बान कर दिया। अब देखना यह है कि मैदान में जीत किसकी होगी, तुम्हारी या मेरी।
1: जीत उसी की होगी जो ज्यादा कुर्बानी देगा।

0: क्या हुआ?
1: कुछ नहीं जनाब, मैंने पूछा कि इन दोनों रास्तों में क्या कोई फर्क है। जवाब मिला कि एक रास्ता हमवार है लेकिन लंबा है, दूसरा ना हमवार है लेकिन जल्दी पहुंचाएगा। हमारा काफिला वहीं से जाना चाहिए।
2: चले आगे बढ़ते हैं। वहां देखिए, वहां जमीन पर कुछ पड़ा हुआ है।
0: देखो क्या है।
2: हाय हाय हाय है।
3: कोई सामान भी है?
2: हाँ है,
3: यकीनन उसका कोई मालिक रहा होगा। भेड़िये का निशाना बन गया होगा या सांप बिच्छू का।
0: आसपास देखो कोई मौजूद है?
2: ए!

0: Right.
1: काफिले का ख्याल रहे, बिल्कुल भी गफलत मत करना।
0: ये मर चुका है, लगता है यहीं पे इसने दम तोड़ा है।
2: यकीनन गर्मी और भूख से भरा होगा।
3: ऐसी बात करो जो समझ में आए मोमिन। अगर बयाबा की गर्मी में ऊंट मरने लगे तो हम और तुम कैसे बचे हुए हैं?
2: यहाँ एक लाश पड़ी है, शायद यही उसका मालिक हो।
3: लगता है भाग रहा था, किसी ने मार डाला।
4: अल्लाह किसी की ऐसी मौत ना लिखे।
2: मुसलमान होने के नाते हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। शायद कोई आए और इसे पहचान कर इसके घर वालों को इसके बारे में इतला कर दे।
5: अगर दो दिन ये ऐसे ही धूप में पड़ा रहा तो इसकी शक्ल सूरत का नामो निशान मिट जाएगा। फिर कैसी निशानी और कैसी इत्तला। क्या कर रहे हैं आप? जनाजे का एहतराम जरूरी है।
6: ये गला घोटने का निशान है। बिच्छू से पहले किसी ने इसको मार दिया है। तुमने रास्ते के बारे में क्या बताया था?
3: अल्लाह का कुरान थोड़ी है, जो जिस रास्ते के बारे में जानता है वही इंतखाब करता है। ये वाला रास्ता एक घंटा जल्दी पहुंचाता है और उसका कारवां सरा मेरा जानने वाला है। अभी तक जिसने भी सफर किया है इसी रास्ते से गए हैं।
6: ये लाश और मरा हुआ ऊंट दोनों बहाना है। ये लोग चाहते हैं कि आधी रात को हम पर हमला करें। हमें आम रास्ते से नहीं जाना चाहिए।
3: काफिला सालार तुम हो या मैं? तुम जो मुहाफिज कमांडर हो और नौकर चाकर लेकर चल रहे हो, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो तुम्हारे दबाव में आकर काफिले का रास्ता बदल दूं।
6: लुटेरे चाहते हैं कि हम डर कर रास्ता बदल लें ताकि आराम से वो हमें लूट सके। लेकिन अक्ल कहती है कि लाश और घोड़ों के पैरों के निशान को हमें बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए।
2: बात तो सही कह रहे हो इलान, लेकिन मिट्टी से पता लग रहा है कि इस रास्ते में बिच्छू है, और अगर बारिश हुई तो हर जगह से बिच्छू निकलेंगे। ये रास्ता ज्यादा अमन वाला है।
6: बिच्छुओं से मुकाबला लुटेरों और रहजनों के मुकाबले से आसान है।
3: इतने साल हम गए, कोई लूट मार नहीं हुई। इस बार आप लोग आ गए तो रास्ता ना अमन हो गया।
6: मेरे साथ मेरी नई दुल्हन है जिसे मैं दांव पर नहीं लगा सकता। मैं और मेरे आदमी उस रास्ते को इंतखाब करेंगे।
2: ये दूसरा रास्ता कारवां सरा से बस एक मंजिल दूर है। मेरी राय तो इस जवान के साथ है। मेरे ख्याल से तो रास्ता बढ़ा लेना बेहतर होगा ताकि हम खतरे से बच सकें।
4: डरता हूँ कि कहीं मर न जाऊं और खाना काबा न देख सकूं।
6: मैं आप लोगों को खाना काबा तक पहुंचाऊंगा।
3: जैसे तुम सब कोई मेहमान हो और मैं इनके घर का नौकर। और तुम अब अगर

0: किसी को एक कांटा भी चुभा तो तुम जिम्मेदार होगे।
1: मुझे कबूल है, इस जिम्मेदारी को हल्का मत समझना। परेशान ना हो, इत्मीनान रखे, बच्चे को यहाँ से ले जाए। चलो।

0: सब कुछ है।
1: शुक्रिया। अब इत्मीनान से नकाब उतार लो और आराम करो। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना।

0: इस तरह किसी को छुपकर नहीं देखते।
1: आपने वादा किया था कि पहुंच जाएंगे तो हिलाल की कमान को अपने हाथों से छू सकूंगा।
0: सही कह रहे हो। आओ ये लो।

0: क्या यहाँ का मालिक जानता है कि तुमने कौन सा खजाना उसकी जमीन में दफन किया?
1: अगर तुम अपना मुंह बंद रखो तो कोई नहीं समझ पाएगा जो एतराज करे।
0: अपने साथ दूसरे बच्चों, औरतों और मर्दों की भी जान का ख्याल रखो।
1: सबसे पहले तो मैं अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि हर बिच्छू 100 सिक्कों का है।

0: है सुनो, एक सवाल है मगर उसका जवाब मेरे और तुम्हारे दरमियान ही होना चाहिए। अमन और अमान की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इंसान बगैर उसके रात को ठीक से सो नहीं सकता। लुटेरों का खतरा हो तो मैं अपने मुहाफिजिन से कह दूं।
1: आराम से रहिए, 40 साल हो रहे हैं इस कारवा सरा को लुटेरों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
0: एक दूसरी जहमत भी देनी थी
1: जी, बताइए।
0: रात को हमने रास्ता बदल दिया था, अब डर है कि कहीं रास्ता ना भटक जाए। सुबह को हमें सही रास्ते की निशानदेही कर देना
1: जी। हम जरूर मदद करेंगे।

0: मैंने कहा मैं उन्हें कल वापस कर दूंगा। कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जब मेरी निगाहें खाना काबा पर पड़े तो मैं दुआ करूं।
1: ए मेरे खुदा, कितना खूबसूरत है ये। काफी सहमत हो गई। यहाँ अच्छा लग रहा है?
0: अच्छा लग रहा है।
2: या अल्लाह, कितना अच्छा हो गया। अकेले क्यों, किसी की मदद ले लेती?
1: सब थके थे, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी।
2: खुदा जज़ाए खैर दे, काफी साफ हो गया।
1: अलबत्ता एकदम अकेली भी तो नहीं थी।
2: बहुत खूब, शुक्रिया छोटे कमांडर।

चाहिए, सब लोग उठ जाइए, अपना बिस्तर से बैठिए। आ जाइए, इतनी तेज बारिश। उठ जाओ, उठ जाओ।

0: يا أمير المؤمنين حسين ابن علي عليه السلام.
1: बारिश की वजह से सभी जमीन के कीड़े मकोड़े बाहर आ गए हैं।
0: जहर निकल गया।
2: Oh,

Finally, to remember that we shall be raising this flag forever. And let every nation know, where Hussein lives, oppression cannot grow. This flag does not merely fly, it declares that truth will never die. Ay Abbas, tere zikr ki taaseer hai alag. Abbas, tere zikr ki taaseer hai alag. Hum sunte sunte wafadar ho gaye. Do hastiyan hai is sari kainat mein jo baghair haath ke ata karti hai. Ek khuda hai, ek Abbas hai. Rizq khuda ka hai, taqseem Abbas karta hai. Karbala ki sarzameen pe hame do parcham nazar aaye. Ek Husaini parcham tha, ek Yazidi parcham tha. Jo Yazidi tha wo past ho gaya, jo Abbasi parcham tha wo zabardast ho gaya. Zahra ne apni duaon mein khuda se ya alamdar manga hai ya azadar manga hai. Alamdar ka haath bhi uncha hai, azadar ka haath bhi uncha hai. Wo is wajah se kyunki dono ke haath ke piche Zahra ki dua saath thi. आखिर में आज़ादारों मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आलम हमें इस दुनिया में हमेशा परचम अब्बास के साए में जमा करे और बरोज़ महशर क़यामत के दिन मौला कायनात के लिवाल हम्द के परचम के तले उसके साए में हमें जमा करे. Towards the end, O Azadars, let's prepare our heart. Listen carefully to these lines of poetry. And towards the end, when I call out Labbaik Ya Hussein, I would like you all to please join me in this call, so that even the heavens can witness our call three times. आखिर में इन्हीं आखिरी मिसरों के साथ इख्तिताम करूंगा. चाहता हूं कि आखिर में लब्बैक या हुसैन की सदा तीन बार हम मिलकर बुलंद करें और हमारी सदा अर्श उला तक पहुंचे. है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन. है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन. करता रहा है इसके लिए क्या से क्या हुसैन. और लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को. लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को. परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन. लब्बैक या हुसैन. लब्बैक या हुसैन. लब्बैक या Thank you.

कासर को कटाने की ये एक रात है बाकी जय मजनून पूरे सकीनायु लगी के ने के

ने उतारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा।

था मुझे जहाँ से भी प्यारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल

0: बदन मेरा है सारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा,
1: जब मुझे आपके कातिल ने

0: कालू से
1: माशाल्लाह सब मिलके नामे मला
0: उच गया अकबर का लहू शे की दस्तार से वो माँ की दस्तार से वो माँ की रिदा तक पहुंच गया अकबर का लहू
1: माशाल्लाह ज़ादान हुसैन बोला सलामत है।

उमरे साथ आ बच्चो छे रजा बे बूंद पानी हा पानी उमरे साथ लश्कर नो जे हालत जोयो तरत ज होरमाला तरफ जोईने जोई छे होरमाला होरमाला एकता कलाम अल हुसैन होरमाला होरमाला हुसैन ना कलाम ने कता कर त्राण फलो तीर होरमाला हुसैन तरफ फेंके छे असगर ने एक कान थी बीजा कान सुधी चीरी लीधो असगर हुसैन ना हाथों ऊपर हता अरे आवी ने हुसैन ना बाजू ऊपर अजादारो तमारा इमाम हुसैन फकत इमाम ना हता बाप भी हता बाप जे बाप ना हाथ मा बच्चा ने आवी रीते जबा करवा मा आवे ई बाप री सु हालत हुसैनी तीर ने काटे छे अमुक थोड़ा लोई निकेरो हुसैन हाथ मा ले लीदा आने सु करे चाहता हता आसमान तरफ फेंके आसमान थी आवाज आवी हुसैन आंखों ने नाहक ने आसमान तरफ फेंकसो कयामत सुधी एक बूंद पानी नहीं बरसे चाहता था जमीन तरफ जमीन थी आवाज आवी हुसैन एक अनाज नो दानो नहीं उठे उगे हुसैन खूने असगर ने लीदा छे आत्मा इनकार आसमां को है राजी जमीन नहीं अरे अली असगर तुम्हारे खू का ठिकाना कहीं असगर ना खून ने पोता ना चेहरा ऊपर आवीज रीते मारा नाना रसूले खुदा ने मुलाकात माटे जाए हवे अजादारो हुसैन ई अमल के राजे काले तम इंशाला आशुरा ना अमल मा कर सो सात वखत खैमा तरफ गया पाचा आव्या सातमी वखते जारे खैमा ना बाजू मा पहुंचा ना सकीना आवाज दे जे बाबा तुम्हें कई मामा के नहीं आओ हुसैन कई मामा दाखल थया बाबा बाबा मारा भाई ने पानी पीरा भी लीदा अटला मा अबा नो दामन उठो सकीना नी नजर पेरी बाबा मारो भाई रुबाब आईवा बेटा फुरात पाथी जानवर तो पानी पी सके छे तारा जे वो फूल जे वो बच्चो एक बूंद पानी नसीब ना असादारो बस छेली बात सांभरी लियो हुसैन बीबियों ने दिलासो दे दीदा अल्लाह कोई बाप ने पोतानी औलाद नी कबर खोदू नसीब ना करे अजादारो हुसैन कहने के कौन मदद करे जुल्फिकार थी खैमाना पछवारे नानी कबर खोदी लीदा असगर जेवा फूल ने कबर नी अंदर दाखिल करी चुकिया पाटिया तो नथी के मैयत ने पाटिया थी ढांके तमारो हुसैन गरीब हुसैन लाचार हुसैन करबलानी आग जेवी रेत ले छे असगर ने चुए छे फूल जेवो असगर आग जेवी रेत सौथी पहला हुसैन आहिस्ता आहिस्ता असगर ना पगो ने दफन करे छे आहिस्ता आहिस्ता दफन करता करता छाती सुधी पहुंचा गला सुधी पहुंचा साहेबे औलाद अल्लाह तमारी औलाद दे सलामत राखे हवे फकत असगर नो फूल जे वो चेहरो बाकी छे हुसैन करबला फातिमा ना लाल थी के वो इम्तिहान ले रही छे हुसैन गरम जेवी रेत लीदा असगर ना चेहरा ने ऊपर रेत राखी हती ने हुसैन जेवो साबी पोता ना चेहरा ने फरामी ले छे

कहते हैं जाबिर यहां हो, जाबिर तुमने क्या किया? का मौला धूप बहुत थी, गर्मी बहुत थी, मैं बाहर से आ रहा था तो मस्जिद में घुसते ही मैंने एक गिलास पानी लिया और पानी पीने से पहले मैंने कहा अस्सलामु अलैका या अब्दुल्ला। चौथे इमाम कहते हैं कि जब तुमने कहा ना अस्सलामु अलैका या अब्दुल्ला तो अल्लाह ने इतने फरिश्तों को नाजिल करा कि मस्जिद नबवी में सजदा करने की जगह बाकी ना रही। इन मजलूसों की, इन अबा अब्दुल्ला कहने की शायद हम असर उसका नहीं देख पाते हैं कि उस दुनिया में इसका कितना असर है अरबाब ऐसा। बस वहां से रहम बहुत है, बुलावा बहुत है। आज की रात वहां से जो रिसेप्टिविटी है वो बहुत है। आज की रात खुद को सिर्फ तैयार करने की रात है कि मैं अपने आप को तैयार कर सकूं आज की रात। इसे शब आशूर कहते हैं। गौर करें, कुछ चीजें मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले अज़ीज़ाने गिरामी, आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया में क्यों ऐसा है कि अली के शिया और हुसैन के शिया सिर्फ जान दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, उनके खानदान शहीद हो रहे हैं, वो कुर्बानियां दे रहे हैं, क्यों ऐसा है? वो इसलिए ऐसा है क्योंकि हमने इस रास्ते का इंतखाब किया है जिसे करबला कहते हैं। आप गौर करें, लुबनान के जो सैयद हैं उन्होंने एक तकरीर की थी, उस तकरीर में उन्होंने, शहीद हुए हमारे सैयद हसन, उन्होंने तकरीर में कहा कि जो ऑप्शन इन हमारे पास है सेम ऑप्शन इन तमाम अरब बादशाहों के पास भी है कि गाजा में बच्चे मरते रहें हम देखते रहें, दुनिया में जुल्म होता रहे हम खामोश रहें हम देखते रहें, सेम ऑप्शन हमारे पास भी है। लेकिन मैं अपने आप से एक सवाल करता हूं, वो ये है कि अगर आज नबी होते और दुनिया में इस तरीके से जुल्म होता तो क्या नबी जुल्म की मुखालिफत करते या खामोश रहते? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास चॉइस क्या है, वही चॉइस है जो हुसैन इब्ने अली के पास थी। क्या कहा था? अदरकजनी बैनस नतैन बैनस सिल्ला व जिल्ला व हैहात मिन नज़िल्ला, हैहात मिन नज़िल्ला। हुसैन इब्ने अली ने क्या कहा कि मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक जिल्लत का जहां जालिम के सामने झुक जाऊं ये जिल्लत का रास्ता है, दूसरा रास्ता कि हक की राह में आगे बढूं और मुझे शहादत मिल जाए। और हुसैन ने कहा मेरे लिए ये शहादत सआदत है। अजीजाने गिरामी, सैयद हसन कह रहे मेरे पास सेम चॉइस थी, हम क्योंकि हुसैन इब्न अली के रास्ते पे चल रहे थे हमने इज्जत का रास्ता इख्तियार किया, जिसने हुसैन को छोड़ दिया उसने जिल्लत का रास्ता इख्तियार किया। आज देखें ये तमाम अरब बादशाह जो हैं जलील व खार हैं, खुद उनकी आवाम उनको गालियां दे रही है, लानतें भेज रही हैं। हिंदुस्तान में आज मुसलमान, मैं यकीन से कह रहा हूं, एक नहीं हजारों हमारे पास शाहिद मौजूद हैं कि हर मुसलमान ये कह रहा है कि हमारा कोई कायद है तो रहबरे मुअज्जम हज़रत आयतुल्लाह खामेनाई।
یہ خدا نے عزت بخشی ہے اس قوم کو جو حسین کے راستے

रास्ते पे चलती है। रहबरे मुअज्जम के पास ऑप्शन था शहादत से पहले कि मैं शहीद नहीं हूं, लेकिन उन्होंने दुनिया को बताया कि हुसैन इब्ने अली की इताअत सिर्फ जबान से नहीं होती, हम अपना खून देख के दुनिया को साबित करेंगे कि हम हुसैनी हैं। अजीजाने गिरामी, आज दुनिया में हुसैनियत, यजीदियत, शहादत, हक तलबी, ये सब कुछ सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहा। हर रोज लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ यजीदी हैं, कुछ कूफी हैं। ये आज वो लोग हैं जिन लोगों ने खुद अपने इख्तियार से हुसैन इब्ने अली का साथी बनने का, खुद उन्होंने चॉइस की है कि मुझे हुसैन का साथी बनना है। ये पहुंचे हुसैन के खेमे में, इनकी तमन्ना क्या है, हुसैन पर मैं शहीद हो जाऊं। अजीजाने गिरामी, आज दुनिया में वो जो पैराडाइम हमने बनाया है शिया सुन्नी, शिया सुन्नी, उससे बाहर निकले। आज दुनिया में हुसैनियत है और यजीदियत है। आप देखें फलस्तीन में सुन्नी है। आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला है, सुन्नी, घर पे बम गिरा और बम गिरने के बाद वीडियो वायरल हुआ था, शायद देखा होगा जवानों ने, कि वो अपनी गोद में बेटी को लेके ऐसे 3 दिन तक अपनी बेटी को गोद में लिए रहा था। पता नहीं बेटी जिंदा है कि शहीद हो गई। 3 दिन तक जब मलबे से बच्चों को निकाला गया, सबको निकाला गया, तो पता चला घर में सब शहीद हो गए, सिर्फ अब्दुल्ला बच गया। सबको लगा था अब्दुल्ला भी शहीद हो गया, लेकिन बच गया। कुछ दिनों के बाद यही अब्दुल्ला अरबईन में जायरीन के पैर दबा रहा था। मैं कहूंगा अब्दुल्ला बचा नहीं, उसे हुसैन ने जायर बना के बचा लिया। मेरा एक दोस्त उसके पास गया, अब्दुल्ला के पास अरबईन में, और उसको पूछा, अब्दुल्ला तुम ये बताओ कि हम इतनी शहादतें देखते हैं, कुर्बानियां देखते हैं, मायूस हो जाते हैं, तुम मायूस नहीं होते? उसने पहले सवाल को अवॉइड किया, फिर बहुत इसरार किया मेरे दोस्त ने, तो उसने बोला कि हमने, गाजा वालों ने ये फैसला कर लिया है कि हमारी जिंदगी से उम्मत मुस्लिमा बेदार नहीं हो रही, तो राह हुसैन पे चलते हुए हम हुसैनी बन के अपना खून देंगे ताकि हमारे खून से उम्मत मुस्लिमा बेदार हो सके। एक सुन्नी है। फिर वो कहता है कि देखो हम हुसैन का किरदार निभा रहे हैं, तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम जैनब का किरदार निभाओ और हमारी मुश्किलों को दुनिया के सामने बताओ। अजीजाने गिरामी, फलस्तीन में सुन्नी है, यमन में सुन्नी है, जिनको हम जैदी शिया कहते हैं, ये सुन्नी है, शिया नहीं है। हिजबुल्ला लुबनान में शिया है, ईरान में शिया है, लेकिन ना शिया है ना सुन्नी है, ये सब हुसैनी हैं और आज की यजीदियत के मुकाबले में खड़े हैं। हम ईरान से इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि वो शिया हैं, अब इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो शिया हैं, हम इसलिए मोहब्बत नहीं करते। पूछो क्यों? क्योंकि अजरबैजान भी शिया है, वहां 95% शिया रहते हैं, लेकिन आप कोई अजरबैजान से मोहब्बत नहीं करता। ईरान से मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि वहां हुसैनी किरदार नजर आता है, किरदार से मोहब्बत करते हैं। शिया कभी भी बायस नहीं होता, शिया आइडियोलॉजिकल होता है, इमोशनल नहीं होता, रैशनल होता है। बस अजीजाने गिरामी, आज की दुनिया को अगर आप देखेंगे तो आज की दुनिया में बहुत बार हमारे जवान आते हैं,

अरे पास मौलाना कितनी शहादतें देंगे, थक गए हम लोग। अजीजाने गिरामी, शहादत कभी नुकसान नहीं होता। हमारा मकतब मकतब शहादत है। हमारे यहां लोग तमन्नाएं शहादत करते हैं। रहबर मुअज्जम बार बार दुआ करते थे, मौला शहादत की मौत अता करना।

कि ये लोग इमाम हुसैन से मिल रहे हैं और इमाम हुसैन इनको दावत दे रहे हैं कि तुम मेरे साथ जुड़ो। जिसको जिसको इमाम ने दावत की, जो दावत दी कि मेरे साथ जुड़ो, सब नहीं जुड़े। सवाल आज की रात शबे आशूर को यह है कि हुसैन ने आपको और मुझे इस फर्शे अज़ा पे बुला के दावत की है, हम जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? ये रिएक्शंस आपके जहनों में रहे कि किस टाइप के रिएक्शंस लोगों ने दिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। हम कहते हैं ना, बुलावा आ जाए, बुलावा आ चुका है, जाएगा कौन खैमे में? अरबाब अज़ा एक दूसरा कैरेक्टर जो है वो है उमर साद। फिर मैं पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी आपके सामने पेश करूंगा आज रात को। उमर साद वो कैरेक्टर है कि वो, मैं आज पढ़ रहा था कि जो खत लिखे गए थे इमाम हुसैन को बुलाने में, उसमें इसने भी खत लिखा था। उमर साद ने, अजीजाने गौर करें, उमर साद कौन है? उमर साद साद बिन अबी वक्कास का बेटा है। साद बिन अबी वक्कास कौन है? तारीख में एक जंगजू, रसूल अल्लाह का सहाबी, मुसलमानों में मशहूर था, शोहरत थी उसकी कि एक बड़ा सहाबी है। उमर साद का सिलेक्शन इसलिए था ताकि जब उमर साद इमाम हुसैन को मारे तो लोगों में यह कहा जाए कि उमर साद बिन अबी वक्कास के बेटे की अली के बेटे से लड़ाई हुई थी। यानी उसको चूज किया गया था खास मोटिव से। साद बिन अबी, उमर साद वो शख्स है जिसने बचपन से हुसैन इब्ने अली को देखा है। आपने और मैंने हुसैन के फजाइल सुने हैं, उसने सब देखा है। उमर साद इमाम हुसैन का कत्ल नहीं करना चाहता था। जब करबला पहुंचे तो उमर साद ने बहुत कोशिश की कि इमाम हुसैन की बयत ले लूं, यानी इमाम हुसैन की बयत ले लूं ताकि जंग ना हो, इमाम हुसैन की बयत भी मिल जाए और मुझे शहरे रय भी मिल जाए। यानी इमाम हुसैन कोशिश करते रहे, ये उमर साद कोशिश करता रहा। दो मुहर्रम से बात कोशिश की चलती रही, चलती रही, चलती रही। गौर करिएगा, जब आखिर में कई खत लिखा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने, हर बार ये कहता था, कोई बहाना कर लेता था कि अभी हमला करेंगे, अभी हमला करेंगे, बात बढ़ती रही, बढ़ती रही। आखिर में क्या हुआ? आखिर में उसने खत लिख के कहा कि अगर तूने हमला नहीं किया, मेरी तरफ तवज्जो करें, अगर तूने हमला नहीं किया तो क्या होगा? कहता है, मैं शिम्र को गवर्नर, शिम्र को कमांडर बना दूंगा, तुझे अज़ल कर दूंगा। अब चूज करना था उसे, अब चूज करना था उसे, हुसैन यानी बहिश्त या जहन्नम और दुनिया। वो कोशिश कर रहा था कि हुसैन को ना मारे, लेकिन टेस्टिंग पीरियड आ गया। इसने कहा, मार दूंगा, शिम्र को गवर्नर नहीं बनने दूंगा, मुझे गवर्नर बनना है, शहरे राय का गवर्नर मुझे बनना है। अजीजाने गिरामी, एक सवाल मैं अपने आप से करता हूं, आप अपने आप से करें। उमर साद पे लानत करना आसान है, लेकिन जो शहरे रहे जिसके लिए उमर साद दीवाना था, अपने नफ्स में छुपी हुई शहरे रहे को पहचानना बड़ा सख्त है। किसी के लिए शोहरत है तो किसी के लिए दौलत है तो किसी के लिए हवस है तो किसी के लिए कुछ और है। कौन
कौन सी चीज रोक

होगा वो क्या होगा। यही धागे हैं, यही जंजीरें हैं जो हमें हुसैन तक पहुंचने से रोक रही हैं। आज की रात इन जंजीरों को तोड़ने की रात है। उमर साद के पास ऑप्शन था, नहीं चूज किया। थर्ड कैरेक्टर अब्दुल्लाह जोफी, उबैदुल्लाह इब्ने जोफी, अलग अलग नाम है तारीख में। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि उबैदुल्लाह इब्ने हुर जोफी जो था वो कूफा से बाहर चला गया था। गौर करिएगा, वो कूफा से बाहर चला गया और कूफा से बाहर जाने के बाद वो अपने साथी से कहता है, ये हुसैन ने क्या कयाम कर दिया, उम्मत मुस्लिमा में जंग हो गई, अब मैं इबादत करना चाहता हूं, चैन से इबादत भी नहीं कर सकता। कभी कभी इबादतें बैरियर होती हैं खुदा तक पहुंचने से। वो सजदे जो इमाम की विलायत और इमामत के साथ ना हो फायदा नहीं देते। अजीजाने गिरामी, ये कह रहा है मलऊन। फिर इमाम उसे मिलते हैं, गौर करिएगा अजीजाने गिरामी, कंडीशनल विलायत इसे कहते हैं। कहता है कि मैं आपको सपोर्ट तो कर सकता था लेकिन मुझे पता है कूफा वाले आपका साथ नहीं देंगे, वो धोखा देंगे, तो अगर मैं जाऊंगा तो मेरी जान वेस्ट हो जाएगी, तो मैं नहीं आ सकता। ये मेरा घोड़ा है, ये मेरी तलवार है, ये घोड़ा ले जाओ, ये घोड़ा फला फास्ट भागता है, ये करता है, तलवार ऐसी है। तू तलवार उसको दे रहा है जिसके पास जुल्फकार है, तो तलवार उसको दे रहा जिसके पास जुल्फकार है। अरबाबे अजा, हुसैन ने कहा मुझे घोड़ा और तलवार नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। आज की रात को हुसैन मुझसे कह रहे हैं मुझे तू चाहिए। कौन है आज हुसैन के साथ चलेगा, या हुसैन को कहेगा उबैदुल्लाह इब्ने हुर जोफी की तरह, आई कैन नॉट कम बट आई कैन गिव दिस मौला, दिस इज फॉर यू, बट आई कैन नॉट कम, you know, I've got life, I've got business, I've got wife and I've got kids and I have a luxurious life, I have comfort in my life, you know, I don't compromise comfort in my life, man. Am I ready to give away everything for Hussain ibn Ali? Is my vilayat conditional? मैंने कल आपको कहा था कि एक गिरोह कूफा में रुका हुआ था इसलिए कि हुसैन को सपोर्ट तब करूंगा जब हुसैन जीतेंगे। हुसैन अगर दुआ करते थे खुदाया मेरी मदद कर तो इन लोग वहां से बैठ के आमीन कहते थे। ये कैरेक्टर है करबला का। अजीजाने गिरामी, हम करबला इसलिए नहीं पढ़ते ताकि हमें यह समझ में आए कि हाँ वो कैसे थे, हमें यह समझना है कि मैं कैसा हूं। करबला इसलिए पढ़ते हैं, जब तक हम मजलिस से पढ़ते हैं बोलते हैं वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब कैमरा घुमा के अपनी तरफ लाते हैं बताओ वो ऐसे थे हम कैसे हैं, यहां से मुश्किल शुरू हो जाती, हम कैसे। अब इसके बरखिलाफ मौला अली के साथ जंगे जमल में लड़ते लड़ते एक सहाबी मोहम्मद, उनके दोनों पैर शहीद हो गए थे जंगे जमल में, कूफा में रहते थे। ताज्जुब की बात यह है कि बड़े बड़े कूफा के लोग, नामचीन लोग करबला नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये दोनों पैर से माजूर जमीन पे अपने आप को रगड़ते रगड़ते कूफा से करबला पहुंच गए। ये है विलायत, पहुंच गया कूफा से लड़, दोनों पैर माजूर थे। एक दूसरे साहबी हैं जिनकी जंग के अंदर दो आंख चली गई थी, नाबीना थे, लेकिन करबला पहुंच गए। यानी जिस्म की कैद इंसान को

हूर जो है वो रो रहे थे शबे आशूर, लेकिन सिर्फ हूर नहीं रो रहे थे, और भी लोग रो रहे थे। हुसैन के पास आने की तमन्ना और लोगों ने भी की थी, लेकिन सिर्फ तमन्नाओं से हुर नहीं बनते, तमन्नाओं से निकलकर इरादे की मंजिल पे आना पड़ता है, तब हुर बनते हैं। आज की रात ओ आई विश से आगे बढ़ के आई वॉन्ट टू बिकम द सोल्जर ऑफ इमाम, यहां तक पहुंचना है। हसरत से नहीं, इरादे से इमाम का सिपाही बनता है। आप देखें अजीजाने गिरामी, एक शख्स है वो खैमे जला रहा है और रो रहा है। पूछा क्यों रो रहे हो? कहा अहले बैत का खैमा है, अहले बैत का खैमा है, जला रहा हूं, रो रहा हूं। तो बोले जानते हो तो जला क्यों रहे हो? कहता मैं नहीं जलाऊंगा तो कोई और जला देगा, उसको इनाम मिल जाएगा। इरादे से हुसैन इब्ने अली के साथी बनते हैं। आज की रात इरादे की रात है। नाफे बिन हिलाल, जिनका मैंने जिक्र किया था, उन्होंने कहा था ना कि मैं रसूल अल्लाह को क्या चेहरा दिखाऊंगा। आज की रात खुद से सवाल करने की रात है कि मैं अगर खैमे हक तक नहीं पहुंच सका तो फातिमा जहरा को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस अरबाब अज़ा शब आशूर भी आ गई और बातें तो बहुत हैं बयान करने के लिए, लेकिन ज़ुहैर एक ऐसा कैरेक्टर है कि आखिरी बयान करके फिर रबते मसायब कि ज़ुहैर हुर एक ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा एग्जांपल है कि हुर ने शब आशूर को ही मेड द डिसीजन After contemplation, he knew there's right, there is wrong. और जब मैं right की तरफ जाऊंगा, हक की तरफ जाऊंगा, तो मुझे कुर्बानी देनी होगी। और सबसे पहले सिर्फ ये नहीं कि join किया, इमाम हुसैन के पास आके कहा कि सबसे पहले आपकी तरफ से मैं लड़ूंगा, सबसे पहले मैं कुर्बानी देना चाहता हूं, मेरा बेटा कुर्बान होना चाहता है। तो तौबा के अंदर contemplation से शुरू होता है, submission तक जाता है। हुर ऐसे बनते हैं। ज़ुहैर एक दूसरे कैरेक्टर हैं। मैंने अर्ज किया था उस्मानी थे, लेकिन ट्रांसफॉर्म ऐसा किया कि एक तरफ उस्मानी थे और जब इमाम हुसैन ने खैमा बनाया तो राइट विंग के हुर वो ज़ुहैर कमांडर बन गए। यानी अगर कोई जवान यहां बैठ के सोच रहा है मैं गुनहगार हूं, मैं कैसे आ सकता हूं, मैं कैसे हुसैन का साथी बन सकता हूं, तो ये सुन ले कि ज़ुहैर कहां से कहां आ गया, हुर कहां से कहां आ गया। द डोर इज ओपन, हुसैन करीम है। मैं एक मिसाल मेरे जहन में आ गई, आपको बोलता हूं। एक बहुत बड़े आयतुल्लाह थे, अल्लामा थे, मजलिस पढ़ते थे। एक दिन वो तेहरान से गुजर रहे थे। यानी हुसैन कितनी मोहब्बत करते हैं, ज़ैनब कुबरा कितनी मोहब्बत करते हैं, और गुनहगारों से भी मोहब्बत करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गुनहगार को हुसैन ने बुलाया है, तू आ मेरी मजलिस में आज, मैं बुला रहा हूं तुझे, तू आ। तू एक मजलिस में आएगा कोई बात नहीं, तू एक मजलिस में है, लेकिन आ तू मेरी मजलिस में, मैं दावत देता हूं, तू आ। अरबाब ऐज़ा वो अल्लामा तेहरान में मजलिस पढ़ने के बाद उनको लिफाफा मिला, वो जा रहे थे तेहरान के बाजारों से गुजरे, बहुत पहले की बात है, ईरान के इनकलाब से पहले की बात। तो उन्होंने देखा है कि एक औरत जो है वो खड़ी है जिस्म फरोशी के लिए। मुहर्रम के अय्याम है। उस औरत को बुलाया, सोचें ये है तो उलमा, उसको बुलाया, वो लिफाफा उसको दिया। कहा मैं तुझसे ख्वाहिश करता हूँ कि लिफाफा ले ले, लेकिन मुहर्रम की रातों में इन गुनाहों से अपने आप को दूर रख।

कुछ सालों के बाद यही आलिमदीन हरम में बैठे थे, वहाँ एक औरत चादर पोश आई और चादर पोश औरत ने आके कहा कि वो जो आपने पैसा दिया था ना, वो आपकी तरफ से नहीं था, फातिमतुज़्ज़हरा की तरफ से, उसने मुझे बदल दिया। आज की रात बदलने की रात है। आपको फातिमा जहरा ने बुलाया है, आपको हुसैन इब्ने अली ने बुलाया है। एक वाकया और है, जिस वाकये में एक शख्स था, शराबी था, लेकिन इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत करता था। मजलिस होती थी तो चला जाता था। एक घर में वो गया जहां पर मजलिस हो रही थी, शराब पी के गया था तो मुंह से बास आ रही थी। बास आ रही थी तो जो बानी था मजलिस का, उसने कहा कि आपसे गुजारिश करता हूं, अब यहां से चले जाएं। चला गया। गुंडा टाइप था लेकिन इमाम हुसैन की मजलिस थी, एहतराम में चला गया। अगले दिन जो बानी था इसको ढूंढते ढूंढते इसके घर पे आया, कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। कहा क्या? कहा आज मजलिस से आज प्लीज आइएगा। कहने लगा कि कल तो आपने कहा था नहीं आओ, आज कह रहे हो आओ, क्यों कह रहे हो आने के लिए? कहा नहीं कुछ नहीं, आप आइए प्लीज। कहा नहीं, जब तक रीजन नहीं बताओगे मैं नहीं आऊंगा। बहुत इसरार किया तो इसने कहा कि रात को मैं सोया मजलिस के बाद तो मैंने एक ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में मैंने देखा कि हुसैन इब्ने अली का एक खैमा लगा हुआ, और हुसैन के साथी हैं, लेकिन वहां पर एक सग, एक कुत्ता है। मैंने जब कुत्ते को गौर से देखा तो कुत्ते का चेहरा कुत्ते का नहीं था, तुम्हारा था। ये शख्स रोते रोते गिर गया। कहा मौला, मौला खैमे की हिफाजत की नौकरी तो मिली। ये शख्स रोते रोते कहता है, मौला खैमे की हिफाजत की नौकरी तो मिली, अरबाब अज़ा ये एक ख्वाब ने उसकी उस बुरी आदत को छुड़ा दिया, और तेहरान में ये शख्स इतना आशिक हुसैन बन गया कि हर मजलिस में जहां जाता था सिर्फ नाम आता था अबा अब्दुल्ला का तो चीख मार के रोया करता था। अरबाब अज़ा हुसैन बुला रहे हैं, शब आशूर है, मौला बुला रहे हैं। तौबा करना करने वालों की रात है, हुसैन की तरफ पलटने वालों की रात है। जिसने आज रात दिल से तौबा किया यकीनन मौला कहते हैं तमाम गुनाह बख्श दिए जाएं। हुसैन की तरफ पलटने की रात है अरबाब अज़ा। बस अरबाब अज़ा जब जुहैर आए मैदान में और लड़ने के लिए आए तो किसी जालिम ने कहा कि तू आ, तुझे मौत का मजा चखाते हैं। जुहैर ने पलट के कहा कि तू मुझे मौत से डराता है, और फिर कहा कि 70 बार मुझे जला दिया जाए, राख बना दी जाए, फिर उड़ा दिया जाए, फिर जला दिया जाए, फिर भी मैं कहूंगा लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सब मिल के कहें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इंशाल्लाह ये लब्बैक रोजे कयामत हमें काम आएगा इंशाल्लाह। हुसैन तुमने आज की रात एक सदा लगाई थी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कि है कोई जो मेरी मदद को आएगा। अरबाब अज़ा आप सोचें, हुसैन ने उस वक्त सदा लगाई जब कोई ना था, अब्बास के बाजू